नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा

0: मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई हो। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 177। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। पहला भाग आज आप सुनेंगे, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नरगिस पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे रात 9:30 से। सुबह 10 कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज। सुनिए फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1 से आप सुनेंगे नया कार्यक्रम सुरीला सफर। दिन में 2 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 कार्यक्रम मन चाहे गीत। दिन में 3:30 का समय है नाट्य तरंग कार्यक्रम का और 4 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा

दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा आप सुन पाएंगे। शाम 6:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज ये कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में नाटिका अटरिया पे चोर, इसके लेखक हैं आशा मिश्रा और निर्देशक कमला सक्सेना। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम, रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए और रात 10 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11 बजे कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 177।

काशी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्री राम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 177। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज इस श्रृंखला की लीजिए सुनिए पहली कड़ी।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: नमस्कार श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा सदियों पुरानी है, जहां सुर, लय और भाव का अद्भुत संगम देखने सुनने को मिलता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस समृद्ध परंपरा में जहां एक ओर महान पुरुष संगीतज्ञों का योगदान रहा है, वहीं दूसरी ओर अनेक महिला रचनाकारों ने भी अपनी अनमोल बंदिशों से इस धरोहर को सजाया और संवारा है। ये बंदिशें केवल रागों की प्रस्तुति मात्र नहीं है, बल्कि इनमें झलकती है एक स्त्री की संवेदना, उसकी अनुभूति, उसकी भक्ति और जीवन के विविध रंगों की सजीव अभिव्यक्ति। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं महिला रचनाकारों की बंदिशें, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल सुरों और रागों का संगम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतिबिंब भी है। जब भी शास्त्रीय संगीत की बंदिशों की चर्चा होती है तो ज्यादातर उस्तादों और पंडितों का ही नाम लिया जाता है, जबकि इस कला को संवारने, संजोने और नई पहचान देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहास के पन्ने पलटे तो अनेक ऐसी महिला रचनाकार का नाम सामने आता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा के जरिए शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, महिला रचनाकारों की बंदिशें। संगीत सरिता की इन कड़ियों में हम उन तमाम महिला रचनाकारों के बारे में बात करेंगे जिनकी बंदिशें आज भी गाई जा रही हैं और उनकी गायकी संगीत में हस्ताक्षर की तरह है। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है विदुषी कल्पना जोकरकर जी, जो आकाशवाणी की टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। विदुषी कल्पना जोकरकर को बचपन

0: से ही संगीत की बारीकियों को समझने का हुनर मिला। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वत्सला भीमसेन जोशी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शिखर सम्मान, श्रीमती कृष्णा हंगल राष्ट्रीय पुरस्कार और भी अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आइए हम कल्पना जी का विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: कल्पना जी के साथ उनकी सुपुत्री अनुजा झोकरकर विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुजा जी आकाशवाणी की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। अनुजा जी स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आमंत्रित साजिंदो का भी परिचय हम आपसे करवा दें। तबले पर हमारे साथ हैं यति भागवत जी, जो आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। यति जी आपका स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: संगीत सरिता की इस रिकॉर्डिंग में हमारे साथ मौजूद हैं हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी, जो आकाशवाणी के बी ग्रेड आर्टिस्ट हैं। ज्ञानेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: तो चलिए शुरू करते हैं श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कल्पना जी, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि बंदिश क्या है।
1: बंदिश मतलब उससे अर्थ ही स्पष्ट होता है कि कोई बंधी हुई रचना।
0: जी,
1: ये एक फारसी शब्द है, लेकिन बंदिशकार या रचनाकार जिनको हम कहते हैं, तो उसमें साहित्य भी आता है जो शब्द बंदिश के लिए उपयोग में आते हैं, और जो स्वर रचना उसको दी जाती है उस राग में निबद्ध होनी चाहिए। खास करके शास्त्रीय संगीत का जहाँ प्रश्न आता है, तो नियमबद्ध शास्त्र के हिसाब से उस राग को प्रस्तुत करना, ये उसकी विशेषता होती है, और उसी के आधार पर उस बंदिश की रचना होती है। जैसे हम कहें कि उस राग का चेहरा हमें उस बंदिश से ही मालूम पड़ जाता है। कई बंदिशों के मुखड़े से हम जान जाते हैं कि अच्छा ये फला राग है।
0: जी जी।
1: तो बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर जो रचना बनाई जाती है, उसमें भाव पक्ष भी है, साहित्य का कुछ पक्ष भी आता है। हालांकि बहुत बड़ा साहित्य नहीं होता है, 4 लाइन या 6 लाइन में बंदिश होती है। बंदिश में 2 प्रकार अधिकतर पाए जाते हैं, जो कि बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल।
0: जी जी।
1: विलंबित ख्याल जिसको कहते हैं, या द्रुत बंदिश।
0: जी जी।
1: तो एक जो विस्तारित स्वरूप जो राग का दिखाता है वो बड़ा ख्याल रहता है, और द्रुत बंदिश यानी छोटा ख्याल जो उसका छोटा स्वरूप लेकिन अधिक लय के साथ उसको बहुत अच्छे से हम प्रदर्शित करते हैं, उसको अलग अलग लयकारी और तानों के साथ हम उसको सजाते हैं।
0: जी,
1: वो द्रुत ख्याल।
0: और स्थाई और अंतरा भी होता
1: जी
0: है।
1: आजकल स्थाई अंतरा गाया जाता है, लेकिन पुराने समय में संचारी अभोग ऐसे 4 प्रकार गाए जाते, संचारी अभोग स्थाई और अंतरा।
0: जी जी।
1: हर राग का जो रस है, उसका जो स्वरूप है
0: जी,
1: उसके हिसाब से उस बंदिश की रचना होती है
0: जी।
1: कभी भक्ति भाव है, कभी करुण रस है, कभी श्रृंगार है, इस तरह अलग अलग भाव के साथ उस राग को और उस बंदिश को बनाया जाता है।
0: तो हम अपने श्रोताओं को ये बताते चलें कि ये श्रृंखला बहुत ही रोचक और जानकारी प्रद होगी। तो आज इस पहली कड़ी में किन महिला रचनाकार की आप चर्चा करना चाहेंगी?
1: हमारी जयपुर अतरौली घराने की वरिष्ठ गायिका गान तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई क्रूडीकर जी, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने कई रचनाओं का निर्माण किया है
0: जी,
1: और उस्ताद अलादिया खान साहब से आपने शिक्षा ग्रहण की है, साथ ही आगरा घराने के हैदर खां एवं विलायत हुसैन खां साहब से भी आपने संक्षिप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मधुर आवाज, लयकारी एवं सूक्ष्म गमक की झलक आपके गायन में दिखाई देती है, साथ ही सुरों का लगाव, नियमबद्ध सुरावट, जोड़ रागों की प्रबलता, लयकारी के खूबसूरत नमूने हमें आपकी गायकी में दिखाई देते हैं। उनकी क्रियाशील सुरीली भावपूर्ण गायकी आनंद प्रदान करती है
0: जी। तो अब इनकी गायी कोई बंदिश प्रस्तुत करेंगी।
1: आदरणीय मोगूबाई क्रूडीकर जी की हम जो बंदिश आपको सुना रहे हैं, उन्होंने उसको स्वरबद्ध किया है राग मालकंस में
0: जी।
1: मालकंस राग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं कि ये भैरवी थाट से उत्पन्न होता है, इसमें रे और प स्वर वर्जित है, इसीलिए इसकी जाति ऑडो ऑडो है। इसका वादी मध्यम एवं संवादी षड्ज है, एवं गान समय रात्रि का 3रा प्रहर।
0: बड़ा ही सुंदर राग है राग मालकंस। तो

वाह, तो ये राग के चलन को आपने गाकर हमारे श्रोताओं को बताया। अब हम अनुजा जी से आग्रह कर रहे हैं कि इसकी बंदिश प्रस्तुत करें।

0: वाह अनुजा जी, बड़ा अच्छा गाया आपने।
1: अब हम आपको आदरणीय मोगुबाई कुर्डीकर जी की बनाई हुई राग बसंत बहार में एक बंदिश सुनाते हैं, मान रे मान रे।

महिला रचनाकारों की बंदिशें, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको अनाड़ी फिल्म का गाना सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। श्रोताओं, आज अभिनेत्री नरगिस की पुण्यतिथि है, तो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ गीतों के माध्यम से हम इस प्रतिभावान अभिनेत्री को याद कर रहे हैं।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदर इंडिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, संगीत है नौशाद का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: ये है चोरी चोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का।

अंतराल का समय पूरा हो चुका है, हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ। अब आपको सुनवाते हैं लाजवंती फिल्म का गाना आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म का गाना जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। गीत को लिखा है रमेश शास्त्री ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हमें राही प्यार के कार्यक्रम में मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: तौर बाल कलाकार, उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977, दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
3: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984, दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजारा।
0: 1993, फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा की जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों की। 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्री 420 फिल्म का ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: के बाद की आठवीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक sec.census.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।
1: तो तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से।
0: सेंसस 2027।

लीजिए अब सुनिए घर संसार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार रवि।

रात और दिन फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसी के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले।

0: वाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
2: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने

0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े

0: बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट्स लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, जिंदगी में भागदौड़ और तनाव इतना बढ़ गया है कि इस बीच हम भूल ही जाते हैं कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। हम अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुलकर हंसना क्या होता है ये भूल ही जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि एक छोटी सी मुस्कान भी हमारे मन को हल्का कर देती है। दोस्तों के साथ की गई मस्ती, परिवार के साथ बिताए हल्के फुल्के पल और छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कोशिश कीजिए कि आप खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करें।

इस दुनिया में हर इंसान रोते हुए ही आता है, लेकिन असली मायने उस जिंदगी के हैं जो मुस्कुराते हुए जी जाएं और हंसते हुए विदा हो जाएं। जीवन में मुश्किलें, दर्द और संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, पर जो इंसान हर हाल में मुस्कान बनाए रखता है वही सच में जीना जानता है। हंसी सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि जीने का नजरिया है, जो खुद को भी सुकून देता है और दूसरों के जीवन में भी उजाला भर देता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी पहचान हमारी मुस्कान से हो।

जिंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बस कभी-कभी हम उसे बहुत ज्यादा गंभीर बना देते हैं। अगर थोड़ा ठहर कर देखें, तो हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें मुस्कुराने की वजह दे सकता है। कभी किसी की बात, कभी कोई याद, तो कभी एक सुकून भरा पल। असली मजा तो इसी में है कि हम इन छोटे छोटे पलों को महसूस करें और दिल से जिएं। तो एक छोटा सा संदेश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान ना सिर्फ आपका दिन बेहतर बनाती है, बल्कि किसी और के चेहरे पर भी खुशी ला सकती है ना?

0: आजादी के बाद की आठवीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक sec.census.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।
1: तो तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से।
0: सेंसस 2027।
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ हम उपस्थित हैं। तमाशा फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: दोस्तों आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस वर्ष की जो थीम है वो है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, यानी कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस। ये इस वर्ष की थीम है। यूनेस्को ने 1991 में इस दिन की घोषणा की थी, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई। और ये दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाई है। तो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसके अलावा आज अभिनेत्री नरगिस को हम याद कर रहे हैं। नरगिस को बहुत प्रतिभावान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। फिल्मों में उनके अभिनय में हमें विविधता दिखाई देती है और उनकी उपस्थिति बहुत गरिमामय है। दिल को छू लेने वाला उनका अभिनय रहा है। जो उनकी जो फिल्में हैं उनमें हमने इस चीज़ को महसूस किया है। 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से वो थी और 1948 से 1957 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में वे दिखाई देती हैं। 1950 के दशक में नरगिस की साड़ियां एक बहुत प्रमुख स्टाइल स्टेटमेंट थी। वैसे तो उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, पर मदर इंडिया फिल्म में उनका जो अभिनय है वो काफी सराहा गया। महज 28 साल की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की माँ का जो किरदार उन्होंने निभाया है, तो वो किरदार निभाकर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। उनके अभिनय की बहुत तारीफ की गई इस फिल्म में। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारा विनम्र नमन। गीत हम आगे और सुनेंगे, उससे पहले संदेश सुनते हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों

0: हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अगला गाना सुनते हैं सुई धागा। इस फिल्म का गाना पेपोन और रोनकिनी गुप्ता की आवाजों में वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनु मलिक का।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, संगीत विशाल और शेखर का।

0: ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीजेस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी. ओबेसिटी भी अभी आजकल एक डिजीज ही माना जा रहा है, लेकिन मोटापा सबको लगता है क्या चलता है, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन अभी वैसा नहीं है, क्योंकि मोटापे से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे होते हैं. तो वो भी एक टाइप का, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो ये तीन चार डिजीजेस हो सकते हैं लाइफ ओरिएंटेड.
1: तो ये डिजीज होने के कारण क्या होते हैं?
0: बेसिकली अपनी डाइट बराबर नहीं होने की वजह से, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से. आजकल देखा गया है क्या जंक फूड खाने का बहुत चलन है, उसकी वजह से ये डिजीजेस बढ़ते हैं. प्लस रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, उसकी वजह से भी ये चीज प्रॉब्लम्स होते हैं. उसका रीजन भी हो सकता है रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने का, क्या बहुत बिजी हो गए हैं लोग, काम करने में इतने बिजी है, क्या डेस्क पे काम करने में फुल डे फुल नाइट भी निकल जाती है और एक्सरसाइज करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता. बट अपने आप को ये डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए अपने को रेगुलर में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है.
1: हम देखते हैं कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल बराबर नहीं होती, डेस्क पे कंटिन्यू काम किया जाता है, इस वजह से ये डिजीज होने की संभावना होती है. इसके अलावा डायबिटीज यदि कंसिडर करते हैं तो डायबिटीज किस किस वजह से होता है?
0: बेसिकली डायबिटीज में दो टाइप्स होते हैं, एक तो इंसुलिन डेफिशिएंसी टाइप 1 डायबिटीज होता है और दूसरा है टाइप 2, जिसमें जनरली मोटापा से रिलेटेड रहता है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. तो ये दो जनरली जेनेटिक रहता है. अगर किसी को परिवार में डायबिटीज है तो आगे होने का डर होता है डायबिटीज. बट अगर अपन लाइफस्टाइल प्रॉपर रखे तो अगर किसी को फैमिली में डायबिटीज है तो आगे अपन उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं या आने के लिए डिले कर सकते हैं. जैसे किसी को अगर 6 महीने में होने वाला है तो उसको अपन 1-2 साल प्रिवेंट करके डिले कर सकते हैं आना. जेनेटिक डिजीजेस को अपन रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको अपन डिले करना अपने हाथ में है.
1: हाँ, उसी के साथ मोटापा के बारे में बात करना चाहेंगे, क्या कारण होते हैं मोटापा आने के?
0: देखो मोटापा भी बेसिकली सब चीजें लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है, जिसमें डाइट और एक्सरसाइज न करना ही होता है. और प्लस बॉडी में कुछ जीन्स की डेफिशिएंसी से भी मोटापा होता है, उसको अपने को मेंटेन करना बहुत जरूरी है.
1: हाँ डॉक्टर साहब, इसके बाद हम बात करेंगे बीपी की. तो बीपी के क्या कारण होते हैं?
0: बीपी का मेन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस. सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस अचानक आता है तो सडन बीपी शूट होने का डर रहता है. उस टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बीपी रिलेटेड हो सकते हैं. तो अपने को वो प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे अपन अचीव कर सके, ये अपने को कोशिश करनी चाहिए. प्लस डाइट भी इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं होना चाहिए डाइट में, उससे भी अपन बीपी को प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं. या अगर किसी को बीपी आ गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप है अपना डाइट कंट्रोल, विच इज सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन.
1: हाँ, उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने बताया था, तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या ये आने के कारण क्या होते हैं?
0: देखो सभी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के मेन इम्पोर्टेंट कारण डाइट और एक्सरसाइज ही है, तो हर डिजीज के वही इम्पोर्टेंट कारण है. बट इसको अपने को प्रिवेंशन करने के लिए रेगुलर डाइट विद लो फैट डाइट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक होना चाहिए. तो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज 5-6 डेज अ वीक, इतना अगर अपन रेगुलर फॉलो करें तो इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर किसी को आने वाला है तो उसको डिले भी कर सकती है डिजीजेस को आने से.
1: डॉक्टर साहब, यदि डायबिटीज की बात करते, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की बात करते, तो इसके नॉर्मल लेवल क्या होती है और घातक कब हो जाता है?
0: देखो डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए शुगर अपना फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर करना पड़ता है. फास्टिंग शुगर शुड बी लेस देन 126, पोस्ट मील शुगर विच इज 2 आवर्स आफ्टर मील शुड बी लेस देन 200, तब अपन बोलते हैं डायबिटीज नहीं है. लेकिन इसमें एक कैच है, अगर 100-126 अगर शुगर है तो उसको अपन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं, और अगर 140-200 अगर पोस्ट मील शुगर है तो उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब ये प्री डायबिटिक स्टेज हो सकता है. तो इसको अपन अगर इस पे, इस टाइम पे अगर अपन प्रॉपर ख्याल दे डाइट और एक्सरसाइज पे, तो अपने को डायबिटीज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. प्लस एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन नाम का टेस्ट होता है, HbA1c जिसको बोलते हैं, उसका लेवल 6.4 के ऊपर हुआ तो डायबिटीज. अगर 5.7 से 6.4 है तो इट इज प्री डायबिटीज, एंड इफ इज लेस देन 5.7 देन इट इज नो डायबिटीज. सो ऐसे अपन डायबिटीज को डायग्नोज कर सकते हैं. फिर अगर ब्लड प्रेशर का लेते हैं तो नॉर्मल लेवल इज लेस देन 120/80, मतलब ये अभी नए गाइडलाइंस में 120/80 दे रहे हैं. अगर 120 to 130 भी है तो इंक्रीज इन बीपी बोलते हैं. उसका स्टेज 1 और स्टेज 2 रहता है, जिसमें सिस्टोलिक बीपी 130 to 140 सिस्टोलिक बीपी अगर है और डायस्टोलिक बीपी 80 to 90 के बीच में है तो ये स्टेज वन होता है। और

0: 140/90, 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक, ये स्टेज टू हाइपरटेंशन है. तो अपने को जितना हो सके 120/80 के पास उसको मेंटेन करना चाहिए बाय डाइट, एक्सरसाइज और अगर आगे लगे तो ड्रग्स. और कोलेस्ट्रॉल के लिए हाई लेवल्स तो ट्राइग्लिसराइड. इसमें कोलेस्ट्रॉल में अलग अलग लेवल्स है, अलग अलग चीजें रहती है. जैसे सिंपल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उसमें एलडीएल बोलते हैं. जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये अपने को कम रखना चाहिए. जितना लेस रहे उतना शरीर के लिए और अपने हार्ट के लिए अच्छा है. और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 150 के नीचे होना चाहिए.
1: डॉक्टर साहब, ये सब तो आपने बताया, लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात होती है वो होते हैं लक्षण. किसी भी डिसीज के लक्षण क्या दिखाई देते हैं उसके ऊपर से उसका डायग्नोसिस होता है कि नहीं ये हो सकता है. तो वन बाय वन हम जानना चाहेंगे. सबसे पहले तो डायबिटीज के लक्षण हम जानना चाहेंगे.
0: देखो, डायबिटीज के सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है बहुत प्यास लगना, बहुत यूरिन होना, उसको पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया बोलते हैं ये. और अगर डायबिटीज बहुत बढ़ गया तो वेट लॉस भी होता है किसी का, बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी अगर हो रहा है तो अपन उस टाइम पे एटलीस्ट चेक कराना चाहिए, उसके पहले ही करना चाहिए. लेकिन अगर पता नहीं चले और वेट लॉस का कारण अपने को समझ नहीं आ रहा है, अगर अपन डाइट एक्सरसाइज कर नहीं रहे फिर भी अपना बिना कुछ प्रोवोकेटिव स्टेप के द वेट इज गोइंग लो, देन यू शुड थिंक अगर डायबिटीज तो नहीं हो रहा है. प्लस अपने को ये भी देखना चाहिए कि अपने परिवार में किसी को था क्या, एंसेस्टर्स को किसी को था तो अपने को होने का रिस्क है. और किसी किसी के इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होते, छोटे छोटी गठाने आती है शरीर पे जिसको बॉइल्स बोलते हैं, तब भी अपन सोच सकते हैं कि इसको डायबिटीज है क्या. फिर ब्लड प्रेशर के इम्पोर्टेंट लक्षण है सडन ऑनसेट हेडेक. किसको आज तक कभी हेडेक नहीं हुआ और एकदम सीवियर हेडेक हो रहा है, तो सबसे पहला चीज अपने को ब्लड प्रेशर अपना चेक करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ नहीं गया है. फिर किसी किसी को चक्कर आ सकते हैं. अगर बीपी बहुत ज्यादा सडनली बढ़ गया है तो ब्रेन हेमरेज भी होता है, लकवा भी हो सकता है, ये अचानक होता है. इसलिए अपने को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये सब कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सके. कोलेस्ट्रॉल हाई होने के स्पेसिफिक लक्षण नहीं रहते, लेकिन उसके लिए अपने को टेस्ट करना इम्पोर्टेंट है. फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करेंगे अपन तो कोलेस्ट्रॉल पकड़ में आता है. सिर्फ एक आंखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के कभी कभी लक्षण दिखते हैं, जो आईलिड्स है उसके ऊपर, जैंथेलेज्मा बोलते हैं उसको, वो कभी कभी दिखते हैं, तो उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल हाई है ये अपन समझ सकते हैं. मोटापा के स्पेसिफिक लक्षण नहीं रहते, बेसिकली वेट गेन ही, अपने हाइट के हिसाब से अपना वेट ज्यादा होना ही मोटापा का लक्षण है. और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वेट बढ़ रहा है तो फिर अपन चेक करें अपना वेट कितना है हाइट के हिसाब से, उसको अपन बीएमआई कैलकुलेट करना पड़ता है. अगर बीएमआई अपना हाई है 25 के ऊपर तो जनरली मोटापा है ये बोलना पड़ता है.
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम.
1: डायग्नोसिस कैसे होता है डायबिटीज के लिए, कुछ टेस्ट होती है?
0: डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर कर सकते हैं अपन, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन. ये तीन चीज से मोरलेस डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाता है. ब्लड प्रेशर के लिए बीपी चेक करना जरूरी है, बट बीपी चेक करने का भी तरीका है, अपने को एकदम साउंड प्रूफ रूम में आराम से रेस्ट करके चेक करना चाहिए. नो दैट अपन घाई घाई में आए और एकदम बीपी चेक कर लिया तो थोड़ा सा बीपी हायर मिलता है. इसलिए रेस्ट करके प्रॉपर लाइंग डाउन में अगर बीपी चेक करे तो ब्लड प्रेशर अपन पकड़ सकते हैं. और कोलेस्ट्रॉल को पकड़ने के लिए ब्लड टेस्ट करने के अलावा स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है जिससे अपन पकड़ सकते हैं.
1: और मोटापा आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डायग्नोसिस होता है?
0: टेस्ट तो ऐसा कोई नहीं होता, बेसिकली वेट ही देखना पड़ता है.
1: हाइट
0: और वेट चेक करके बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहिए, उससे पता चलता है मोटापा.
1: अब डायबिटीज खुद में एक डिसीज है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और हम डायग्नोज भी करते हैं, लेकिन मोटापा जो है वो बहुत डिसीज का कारण भी हो सकता है. तो ये कौन से डिसीज का कारण हो सकता है मोटापा?
0: मोटापा ब्लड प्रेशर का भी कारण हो सकता है, डायबिटीज का भी कारण हो सकता है. एक स्लीप एपनिया नाम का डिजीज है जहाँ पे किसी को स्नोरिंग की हिस्ट्री है, खराटे मारते हैं रात में, तो वो उससे मोटापा से रिलेटेड वो बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है स्नोरिंग. फिर हार्ट डिजीजेस भी होते हैं मोटापा से रिलेटेड, तो ये सब डिजीजेस हो सकते हैं मोटापा से.
1: बीपी के लक्षण आपने बताए कि क्या दिखाई देते हैं और डायग्नोसिस भी बताया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बताया. अब ये सब डिसीज जो है इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या होती है?
0: देखो सब चारों डिजीज जो अपन डिस्कस करके, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डाइट कंट्रोल में

0: लो फैट डाइट लेना चाहिए, रेगुलर डाइट रखना बहुत जरूरी है, टाइमिंग ऑफ डाइट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट. बहुत बार ऐसा होता है कि दिन भर इतना बिजी होने की वजह से डाइट का टाइम ही फिक्स नहीं है, रात को 10 11 12 बजे खाना खा रहे हैं और एकदम सो जा रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है बिकॉज दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन दीज डिजीजेस. प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करना 150 मिनट्स पर वीक को अपन इससे प्रिवेंट कर सकते हैं. और अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर किसी को डायबिटीज हो रहा है तो फिर उसके लिए फिर दवाइयां रहती है जो अपन चालू कर सकते हैं. उसमें टैबलेट्स है, इंसुलिन है, बहुत सारी दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां चालू कर सकते हैं, ओबेसिटी के लिए भी आजकल नए ड्रग्स आ रहे हैं जो अपन यूज कर सकते हैं.
1: हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज और बीपी की गोली एक बार शुरू हो जाए तो वो बंद नहीं होती, क्या ये सच है?
0: बंद होती नहीं है लेकिन उसको अपन कम कर सकते हैं. प्लस बेसिकली लाइफस्टाइल को ठीक किया गया तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों को अपन एक बार के लिए रिवर्स भी कर सकते हैं. जैसे बीपी किसी को हाई हो गया, अगर अपन ने प्रॉपर सॉल्ट का ख्याल किया, रेगुलर एक्सरसाइज किए, तो स्टेज वन से इट कैन बिकम नॉर्मल ऑल्सो विदाउट ड्रग्स. डायबिटीज ऑल्सो इनिशियल जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, जहां पे डायबिटीज होने का पहले का स्टेज है, तो उसको भी अपन रिवर्स कर सकते हैं. बहुत बार लोगों का डायबिटीज क्या होता है, जब तक वो डायग्नोस नहीं होता है उनके डाइट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है. बट जब डायग्नोस हुआ और अपन ने उनको बराबर समझाया कि ये डाइट में अवॉइड करना चाहिए, स्वीट्स अवॉइड करना चाहिए, जब वो प्रॉपर फॉलो करते हैं तो बहुत बार इनिशियल में टैबलेट्स चालू करके एक महीने में उसको बंद भी करना पड़ता है, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है उसका कि HbA1c बिलो 6.4 चला जाता है. तो उस टाइम पे अपने को मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी, मतलब वो बंद नहीं होगा. गुड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा.
1: तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, ऐसे हम कह सकते हैं. डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे. श्रोते हो अपने का तहत मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपुर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम. आजचा आपला विषय आहे जीवनशैलीशी निगडीत आजार आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपूरचे जनरल फिजिशियन डॉक्टर अतुल सोमानी.
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम.
1: डॉक्टर साहब, फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम में. अब हमने जाना कि ये डिसीज क्यों होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं. ट्रीटमेंट के बारे में हमने ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए ये जाना, लेकिन हम इंडिविजुअल डिसीज के बारे में जानना चाहेंगे कि डायबिटीज जो होता है इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होती है और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है.
0: डायबिटीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिपेंड्स कौन से टाइप का डायबिटीज है. अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप वन जनरली जो बच्चों में और यंग पेशेंट्स में होता है उनमें इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है. और दूसरा जो टाइप है, टाइप टू डायबिटीज जो ओबेसिटी से रिलेटेड होता है, उसमें टैबलेट्स है, उसमें मल्टीपल टैबलेट्स आते हैं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है मेटफॉर्मिन, जो ड्रग अपन रेगुलर में अप फ्रंट सबको चालू करना चाहिए. अगर किसी का डायबिटीज लाइफस्टाइल से ठीक नहीं हो रहा है, डाइट और एक्सरसाइज से, तो उसमें मेटफॉर्मिन ड्रग ऐड करते हैं. अभी नए ड्रग्स भी बहुत सारे आ गए हैं जो अपना डायबिटीज भी कंट्रोल करते हैं और वेट कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं. तो उस टाइप के ड्रग्स, जैसे डायबिटीज को अपन पेशेंट को डायबिटीज के साथ और क्या प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से ड्रग्स डिसाइड कर सकते हैं कौन सा यूज करना है. जैसे किसी को डायबिटीज और मोटापा है तो उसमें एक अलग टाइप का ड्रग है, वो अपन यूज कर सकते हैं जो डायबिटीज में भी हेल्प करता है और वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है. अगर किसी को बीपी के साथ डायबिटीज है तो वो उसमें अलग टाइप के ड्रग्स, उसमें अपने को मेटफॉर्मिन और ये ड्रग्स यूज करना चाहिए.
1: बीपी के लिए गोली जो ली जाती है वो भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है, वो रिवर्स हो सकता है.
0: बीपी के लिए गोली भी अपन बीपी के साथ और कौन से डिजीजेस एसोसिएटेड है उसके हिसाब से जनरली गोली डिसाइड होती है. अगर किसी को बीपी के साथ हार्ट का प्रॉब्लम है तो बीटा ब्लॉकर्स नाम के ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, वो अपन यूज कर सकते हैं. और अगर किसी को डायबिटीज के साथ है तो उसमें एस इनहिबिटर्स इम्पॉर्टेंट है. ये दोनों डिजीज में मेटाबॉलिक लेवल पे हेल्प करते हैं, इसलिए इस टाइप का चॉइस अपने को लेना पड़ता है. पेशेंट को अगर बीपी है तो उसके लिए कौन सा ड्रग देना चाहिए. ये ड्रग्स अपन इनिशियल मिनिमल डोज पे चालू करके पेशेंट का बीपी वॉच रखते हैं एवरी 10 to 15 days. अगर बीपी कंट्रोल में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं कंट्रोल आया तो वी कैन इंक्रीज द डोज. और अगर पेशेंट ने लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज प्रॉपर किया तो कभी कभी ये मेडिसिन के डोजेस कम भी होते हैं और बंद भी हो जाते हैं.
1: इसके बाद हम बात करना चाहेंगे कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल पे कुछ ट्रीटमेंट है एडवांस?
0: एडवांस ट्रीटमेंट है, रेगुलर ट्रीटमेंट बहुत सालों से चल रहा है, स्टैटिन नाम के ड्रग्स है जो ये अपन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, जहां पे LDL हाई है उसके लिए देते हैं. कोलेस्ट्रॉल के लिए नए ड्रग्स

0: भी आ गए हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स भी है जहाँ कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, बट वो स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज करते हैं।
1: हाँ, तो ये सब ट्रीटमेंट दी जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें एज लिमिट कुछ है कि ये डिसीज इतने एज के बाद ही होता है, ऐसा कुछ?
0: ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कोई भी एज में सकता है। यंग पेशेंट्स में भी डायबिटीज होता है, यंग पेशेंट्स में भी बीपी बढ़ता है। जनरली बोलते हैं एल्डरली में ये सब चीजें होती है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस के वजह से ये सब चीजें पहले ही हो रही है। यंग लोगों में जल्दी आ रही है ये डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें जल्दी आ रही है।
1: जेनेटिक्स के बारे में आपने कहा था, डायबिटीज यदि फैमिली में है तो हो सकता है, ऐसे ही बीपी कोलेस्ट्रॉल के बारे में है?
0: ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इतना नहीं है, जेनेटिक में कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा रहता है। ब्लड प्रेशर का ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि अब फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है तो अपने को हो जाए। जनरली डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल फैमिली में अगर किसी को है तो होने के चांसेस रहते हैं। फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है।
1: तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम यदि फैमिली में है और हमें नहीं होना चाहिए ऐसे हमें लगता है?
0: क्योंकि अगर किसी को पता है कि फैमिली में डायबिटीज है तो सबसे पहले तो अपन डाइट पहले से फॉलो करना चालू कर दें, जहां पे अपन स्वीट रेस्ट्रिक्शन कर दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो डायबिटीज कल होने वाला है उसको अपन डीले करके साल, दो साल, पांच साल, जितना डीले कर सकते हैं अगर अपन रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट करें तो ये पॉसिबल है। प्लस कोलेस्ट्रॉल के लिए भी सेम चीज है, मतलब डाइट और एक्सरसाइज से ही उसको अपन डीले कर सकते हैं आना।
1: हाँ, तो डाइट और एक्सरसाइज ये सबसे मेन बात है। डॉक्टर साहब, सभी चीजें आपने बताई है, लेकिन सबसे मेन बात ये आती है कि एक जनरल लाइफस्टाइल इंसान की कैसी होनी चाहिए ताकि ये डिसीजेस ना हो।
0: ठीक है, जनरल लाइफस्टाइल इज हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। उसमें दिनचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कोई भी टाइप का कर सकते हैं अपन, इट कैन बी रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग और जिम, बट जो भी एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं वो रेगुलर फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं क्या दो दिन एक्सरसाइज करें, तीन चार दिन नहीं करें, उससे अपने चीजें कंट्रोल नहीं होगी, तो वो करना है। डाइट का टाइम फिक्स करना है, रात में लेट खाना नहीं चाहिए, जितना जल्दी खाएं उतना अच्छा है। अराउंड 7 to 8 o'clock के बीच में अगर अपन रात का डिनर ले ले, पॉसिबल है तो बेस्ट है। अगर अपन समझो काम भी कर रहे हैं तो पहले डिनर ले ले फिर अपना काम कंप्लीट करें, दैट इज ऑल्सो ओके। लेट खाने से बॉडी में जो अपन खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से तकलीफ होती है। प्लस ये सब चीजें अपने को होने वाला ही नहीं, उसके लिए प्रिवेंटिव चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव चेकअप्स में अपन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कर सकते हैं, वंस इन 1 to 2 years अगर पता चला अपने को रेगुलर, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में पता चलते हैं। जैसे डायबिटीज किसी को है नहीं, लेकिन अपन रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं तब मालूम पड़ता है कि शुगर बढ़ने लगा है, क्योंकि शुगर के सिम्टम्स जब शुगर ज्यादा बढ़ता है तब आते हैं। उसके पहले पकड़ना है तो अपने को टेस्ट ही करना पड़ता है। तो अपन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करें, हर हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं, मैक्स में भी हो रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, वहां पे अपन अगर करेंगे तो अपन ये डिजीजेस पकड़ सकते हैं जल्दी। लाइक ब्लड प्रेशर जब तक अपन चेक नहीं करेंगे अपने को पता नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सिम्टम्स किसी किसी को 140 90 के ऊपर गया तो सिम्टम्स आते हैं, और किसी किसी को 200/100 भी हो गया तो सिम्टम नहीं आते। तो इस सिचुएशन में जिसका बीपी बहुत बढ़ जाता है और उसको सिम्टम्स नहीं आते वो बहुत खतरा है, तो उसको अपन पता कैसे करेंगे? अपने को बीपी ब्लड प्रेशर चेक ही करना पड़ेगा तभी अपने को पता चलेगा। तो इसलिए प्रिवेंटिव चेकअप्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजीज से को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर कोई डिजीज अपने को आ गया है तो उसको जल्दी ट्रीटमेंट चालू करें ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सके।
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: डॉक्टर साहब, यदि ट्रीटमेंट ना हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं?
0: जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट का अगर अपन ट्रीटमेंट नहीं करते, हाई शुगर की वजह से पेशेंट कोमा में जाते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कोमा नाम का चीज है, हाइपरग्लाइसेमिक कोमा होता है। प्लस ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं वो पेशेंट्स को, नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसमें किडनी डैमेज होती है, और एक बार अगर किडनी डैमेज हो गई तो रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डैमेज होने के पहले अपन अगर डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल करें तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस अपन अवॉइड कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मेन कॉम्प्लिकेशंस लकवा होना और ब्रेन हेमरेज, ये दो चीज मेन कॉम्प्लिकेशन है। प्लस अगर सडन बीपी शूट हो गया तो कभी कभी हार्ट पे भी इफेक्ट आता है, हार्ट फेलियर हो सकता है।

0: अचानक सांस फूलना, ऑक्सीजन कम होना, सडन बीपी बढ़ने से ये एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है।
1: हाँ।
0: और डायबिटीज ब्लड प्रेशर के लिए, दोनों के वजह से हार्ट डिजीज भी होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो ब्लॉकेज होते हैं वो, ये डिजीजेज में कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ गया तो उसमें भी हार्ट के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: हाँ, और मोटापा की वजह से?
0: मोटापा की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब किसी का ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल ही नहीं आता। अगर ब्लड प्रेशर है तो मोटापा कंट्रोल करेंगे तो ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल हो जाएगा।
1: हाँ।
0: प्लस मोटापा से स्लीप एपनिया बीमारी हो सकती है, जो स्लीप एपनिया में पेशेंट को रात को नींद बराबर नहीं आती है, स्नोरिंग रहता है, नींद टूट जाती है, इसलिए पेशेंट को दिन में ज्यादा नींद आती है। मतलब सडनली बैठे बैठे झपकी ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है क्योंकि रात में नींद प्रॉपर नहीं हो रही है।
1: हाँ।
0: तो उसको, वो मोटापा की वजह से मेन डिजीज है जो होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए वेट रिडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट।
1: डॉक्टर साहब, ये सब तो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी हम देख रहे हैं कि धूप बहुत बढ़ते जा रही है, तो ऐसे इसमें भी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आने चाहिए?
0: बिल्कुल, देखो अभी समर सीजन है, हीट बहुत ज्यादा है। पहले अपन समझ लेते हैं कि हीट के वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली हीट के वजह से पेशेंट्स को हीट इडिमा बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है फिंगर्स पे, टोज में स्वेलिंग आ जाती है, प्लस प्रिकली हीट है जो सबको पता है, घमोलिया होना बैक में होता है, ये गर्मी की वजह से होता है। हीट क्रैम्प्स होते हैं जिसमें मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। फिर हीट से बहुत थकावट होती है, हीट एग्जॉशन, और लास्ट स्टेज है हीट स्ट्रोक। नाउ हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि पेशेंट का ब्रेन फंक्शन अच्छा रहता है और टेम्परेचर 105 के ऊपर जनरली नहीं जाता, 105 डिग्री फारेनहाइट। और हीट स्ट्रोक में पेशेंट के ब्रेन फंक्शन पे भी इफेक्ट होता है और टेम्परेचर 105 के ऊपर रहता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन से अपने को डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि हीट एग्जॉशन जनरली ओल्ड पेशेंट जिनको पुरानी बीमारियां हैं उनको होने के चांसेस रहते हैं, हीट स्ट्रोक यंग पेशेंट में होते हैं जो लेबरर्स हैं, जो धूप में काम कर रहे हैं, उनको हीट स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम रहता है। और हीट स्ट्रोक हुआ तो जनरली जल्दी कंट्रोल लाना पड़ता है टेम्परेचर को, उसको अपन एडमिट करके करना पड़ता है। हीट एग्जॉशन को ओपीडी बेसिस पे घर पे मैनेज कर सकते हैं अगर अपन कोल्ड एटमॉस्फेयर में रहे। और इसको अपन प्रिवेंट कैसे करेंगे कि अपन अच्छा हाइड्रेट करें अपने आप को, लिक्विड्स बहुत ले, सिर्फ प्लेन वाटर नहीं, बट लिक्विड्स में सॉल्ट एंड वाटर विच इंक्लूड्स ORS सॉल्यूशन, फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, ये सब अगर अपन प्रॉपर लेंगे तो अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो ये, इससे अपन बच सकते हैं। प्लस अगर धूप वाले टाइम पे, बहुत ज्यादा जब धूप है दोपहर के टाइम पे, अगर अपन बाहर निकलना अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर निकलना भी पड़े तो इतना ख्याल रहे कि अपन बहुत टाइम के लिए एक ही जगह पे धूप में खड़े न रहे, क्योंकि उससे अपना सडन बीपी डाउन होने का डर है, जिसपे चक्कर आ सकते हैं, गिरने का डर है, उसमें हीट सिंकोप भी होता है अगर बहुत सडनली बीपी डाउन हो गया तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है उस टाइम पे।
1: हाँ, तो ये सब चीजें हो सकती है। फिर प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं?
0: देखो प्रिकॉशंस में अपने को जितना पॉसिबल है, अगर जब बहुत ज्यादा धूप है उस टाइम पे बाहर निकलना अवॉइड करें, अपने आप को हाइड्रेट अच्छी से रखें, पानी अच्छी से पिए, लिक्विड्स अच्छी से लें, कपड़े अगर पहन रहे तो लाइट क्लोथ्स और लूज क्लोथिंग पहने तो ज्यादा बेटर है। एक ही जगह पे धूप में बहुत देर के लिए खड़े ना रहें, और अगर खड़े रहना पड़े तो पॉसिबल है कि कहीं बीच में शेड में अपन रुकें, प्रिवेंट उस हिसाब से मैनेज करें।
1: हाँ, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं।
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: डॉक्टर साहब, अंत में हमारे श्रोताओं को लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस के बारे में आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे?
0: देखिए, अपन ने ये पूरे लास्ट 20-25 मिनट में डिस्कस भी किया है लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीजेस को अपने को कैसे पकड़ना चाहिए। तो एक इन जिस्ट अगर अपन बताएं सब डिजीजेस का, लाइफस्टाइल डिजीजेस में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल आता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज करना चाहिए। डाइट में फैटी फूड्स और जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड फूड्स कम करना चाहिए, पैकेज्ड स्नैक्स जो रहते हैं उसको कम करना चाहिए, ताकि उससे अपना कोलेस्ट्रॉल और ये कंट्रोल में रहे। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक फॉलो करना चाहिए। ये सब करने के बाद भी अगर किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है तो उसके लक्षण

0: अपन ने डिस्कस किए, डायबिटीज होएगा तो क्या सिम्टम्स होते हैं, प्यास लगना, ज्यादा पेशाब होना, ये उसके सिम्टम्स हैं। उसको फिर डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर्स लेवल्स चेक करके उसके बाद अपना ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग्स, जो अपन ड्रग्स यूज करते हैं उसमें भी पेशेंट को साथ में कोई कोमॉर्बिड डिजीजेस है, क्या ब्लड प्रेशर साथ में है तो कौन सी दवाई यूज करना चाहिए, ये प्रेफरेंस लेके उस दवाई को ऐड कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए भी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट, और रेगुलर बीपी चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड प्रेशर अपन नापेंगे नहीं तो अपने को पता ही नहीं चलता है। सिम्टम्स कभी कभी बहुत लेट आते हैं या फिर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गया तब पता चलता है कि इसको ब्लड प्रेशर था। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अपने को ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ब्लड टेस्ट के बिना कोलेस्ट्रॉल हाई है ये मालूम नहीं पड़ता। मोटापे के लिए तो अपने को दिखता है क्या मोटापा हो रहा है करके, तो उस टाइम पे मोटापे में ये भी समझना जरूरी है कि मोटापा कोई बीमारी से तो नहीं हो रहा है। अगर मोटापा कोई बीमारी से है, जैसे किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, उसमें भी मोटापा होता है। किसी को कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम है, कुशिंग्स डिजीज नाम की बीमारी है, उसमें भी मोटापा होता है। तो जब अपन मोटापा डिस्कस करते हैं तब या पता चलता है तो अपने को पहले रूल आउट करना चाहिए कोई ऐसी बीमारी तो शरीर में नहीं है जिससे मोटापा हो रहा है। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो पहले उसको ठीक करना चाहिए, तो मोटापा अपने आप ठीक होगा। और अगर किसी को कुशिंग्स नाम की बीमारी है तो उसमें शरीर में हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत बढ़ जाता है, तो उसके कारण बहुत रहते हैं। उसको अगर अपन पता करें, उसका ट्रीटमेंट करें तो मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। बट जो मोटापा ऐसा है जिसमें शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वो मोटापे के लिए लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अपन डाइट कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, उसके बाद भी किसी का बीएमआई अगर कम नहीं हो रहा है तो ड्रग्स अवेलेबल है, जो अभी कॉस्ट भी कम हो गया है, बिकॉज जो इंटरनेशनल ड्रग्स थे अभी ऑफ पेटेंट हुए हैं तो वो कॉस्ट कम हो गए, इसलिए वो ड्रग्स भी अपन यूज कर सकते हैं। किसी का बीएमआई कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो सर्जरी भी एक पॉसिबिलिटी है, जहां पे बैरियाट्रिक सर्जरी करके अपन पेशेंट का वेट कम कर सकते हैं।
1: तो ये सब चीजें हो सकती है। डॉक्टर अतुल सोमानी, आप यहाँ पर आए और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस के बारे में हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन किया, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: नमस्कार। श्रोते हो, आपण ऐकत होतात कार्यक्रम मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर, प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर। आजचा आपला विषय होता जीवनशैलीशी निगडीत आजार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन केलं मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूरचे जनरल फिजिशियन डॉक्टर अतुल सोमानी यांनी। तेव्हा मी वैदेही चौरे डॉक्टर अतुल सोमानी यांच्यासह घेते आपली रजा। नमस्कार। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर। या कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या होत्या संगीता अरजपुरे।
2: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
3: श्रोते हो, आताच आपण मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नागपूर हॅलो डॉक्टर हा प्रायोजित कार्यक्रम ऐकलात। हा कार्यक्रम आकाशवाणी नागपूरच्या विविध भारती केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

भारती केंद्रावरून आपण ऐकत होतात. एफएम बँड 14.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है. श्रोताओं, इस समय सुबह के 10:30 हो चुके हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिश्र संगीत.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केशव त्योहार का गाया, लिखा और संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। इस गीत के बाद सुनाते हैं आदित्य राठौर का गाया ये गीत।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: शादी के बाद की आठवीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक sec.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।
1: तो तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से।
0: सेंसस 2027।
2: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिश्र संगीत। आइए इस गीत के बाद सुनवाते हैं रंजना दुबे का गाया, अनुज तिवारी का लिखा गीत, संगीत असलम मिर्जापुरी का है।

एफएम बैंड 14.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है। सुबह के 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मधुमालती।

श्रोताओं, इस गीत के बाद सुनिए लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास का गाया त्रिशूल फिल्म का लिखा गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने। इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले का गाया गुलजार का लिखा गीत, संगीत आर डी बर्मन का है। फिल्म का नाम था खूबसूरत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ का गाया बॉर्डर फिल्म का लिखा गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने। इस गीत की धुन बनाई थी अन्नु मलिक ने। श्रोताओं, इस गीत के बाद सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने। फिल्म का नाम है सवेरे वाली गाड़ी।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह का गाया गुलजार का लिखा गीत सुनिए। संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म का नाम है सितारा।

0: रहा आणि नक्की सहभागी व्हा. जनगणना 2027.
1: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुमालती. आइए इस गीत के बाद सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म का नाम है बेमिसाल.

इस गीत के बाद सुनवाते हैं आशा भोसले किशोर कुमार का गाया माया गोविंद का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है झूठी।

श्रोताओं, इस गीत के बाद सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, गुलशन बावरा का लिखा गीत, संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म का नाम है राही बदल गए।

श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम के अंत में सुनिए भूपेंद्र सिंह और सुलक्षणा पंडित का गाया गृह प्रवेश फिल्म का लिखा गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने। इस गीत की धुन बनाई है कणू रॉय ने।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

FM 106.6 MHz पर आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है। ठीक 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र

0: ये एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

और भई ऐसे गीतों से तो हर किसी को आशिकी हो जाती है ना। बहरहाल, यादों की महफिल कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना बरसात फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़, जलाल मलिहाबादी के बोल थे और शंकर जयकिशन की यादगार बड़ी ही प्यारी सी तर्ज। चलिए आपको बता दें कि आज यादों की महफिल कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों से।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना हमने आपको सुनवाया आशा भोसले के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था और फिल्म थी लाजवंती। चलिए अब यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें। शकील बदायूनी की रचना है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर। क्या कहता है ये गाना, आइए सुनें।

0: मतवाला जिया, आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से ये गीत। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद की तर्ज, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के युगल स्वर। लता मंगेशकर का गाया एक और गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: तो चलिए इस संदेश के बाद अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज।

लता मंगेशकर की गायकी और अभिनेत्री नरगिस का अभिनय दोनों ही कमाल। आपको बता दें, चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। एक और फिल्म अभिनेत्री नरगिस की, इसमें लता मंगेशकर की आवाज है, इस गीत में राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। फिल्म अदालत।

और अब हम बढ़ेंगे अदालत फिल्म के गाने के बाद आह फिल्म के गाने की ओर। आह फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में है, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

0: आग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, स्वर शमशाद बेगम का था, बेजाद लखनवी के बोल थे, राम गांगुली का संगीत। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये संदेश।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सलिल चौधरी के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर, फिल्म थी जागते रहो।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का स्वर था। फिल्म का नाम रात और दिन। अब आवारा फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और आवाज लता मंगेशकर की।

अंदाज फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद अली की तर्ज। और अब अगले गाने में भी नौशाद अली की तर्ज है, लेकिन इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, फिल्म का नाम बाबुल। यही है आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों के गीत।

बाबुल फिल्म का ये गाना था। आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आपने सुने अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माए गए फिल्मों के गाने।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

सभी का स्वागत। तो चलिए आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आपको बता दी जाए। आज हमने एक टेक्स्ट पोस्ट किया और वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो भाई, इसी में से हमने कुछ शब्द चुने हैं। अब आपको पहचानने हैं वो शब्द और उनसे जुड़े गीत। देखते हैं हमारी आपकी पसंद कितनी और कहां तक मिलती है। वैसे अभी मैं इस टेक्स्ट को एक बार और पढ़कर आपको बताऊंगी और थोड़ा सा उन शब्दों पे जोर भी दूंगी, ताकि आपके लिए और भी सहूलियत हो जाए। आपको बता दें, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई, ये धुन बज गई और एक लिसनर हमारी लिखती है कि आज लिसनर्स ये भी नोटिस करेंगे कि न्यू प्रोग्राम में बैकग्राउंड म्यूजिक दिल तो पागल है की जगह कौन सा सुनाई देगा। तो भाई, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रोग्राम नया है, लेकिन हमारा अंदाज वही रहेगा। एक साथी ने लिखा है कि हम भी एक सुहाने सफर में हैं और रास्ते से कमेंट कर रहे हैं, प्रकृति के बीच विविध भारती का साथ, मधुर संगीत आनंद ही आनंद है। तो चलिए एक बार उस टेक्स्ट को मैं फिर से पढ़ती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो चलिए, अब आप समझ ही गए होंगे और आज भाई दिल की बातें हो रही हैं, तो क्यों ना की जाएं। साथियों, जब बात दिल की हो तो आपको कौन सा गाना याद आता है? वैसे जरा ये तो बताइए कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है।

तो भाई आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने से। हमारी एक लिसनर ने लिखा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में मौसम के बदलते मिजाज और जज्बातों को बयां किया है। गर्मी की तपिश से लेकर सावन की फुहार तक का सफर वाकई किसी प्रेम कहानी से कम नहीं। यूं तो मौसम का हर रंग एक अलग अलग कहानी है और बारिश की हर बूंद किसी की याद का छोटा सा दर्पण, लेकिन तपती गर्मी में छांव जैसी मुलाकातें ही तो जीवन को सचमुच हसीन बनाती हैं। और आज के इन्होंने शब्द दिए हैं, ठंडी हवा, छुपा, रिमझिम, सावन, इंतजार, कतरा कतरा, पानी, अधूरी कहानी, मौसम, रंग, मुलाकात, पल, धूप, छांव और मुस्कुराहट। क्या बात है भाई, आपने खुद ही इतना प्यारा टेक्स्ट लिखकर भेज दिया।

हमारे एक साथी लिखते हैं तो कि आज तो आपकी आवाज में सिर्फ कार्यक्रम को सुना जाएगा, इस तपती धूप में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप कार्यक्रम सुनिए, एंजॉय कीजिए। वैसे साथियों, कुछ साथी हमारे इस नए कार्यक्रम का शय स्वरूप अभी नहीं समझ पाए हैं, और वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है। कुछ तो परिवर्तन हर जगह जरूरी होता है, हम अपनी जिंदगी में भी तो परिवर्तन करते हैं ना। तो बस ये परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में यही चेंजेस बहुत इजी और बहुत आसान और मनोरंजक हो जाते हैं। एक साथी लिखते हैं कि हैव अ नाइस सैट संडे, और गर्मी चली गई है और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, शायद इन्होंने कहीं उत्तराखंड साइड की बातें लिखी हैं। और एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़ने पर 1978 में चौथी कक्षा में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई है, मैं लिख रहा हूँ। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदे बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल, लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदे आई, बिजली चमक रही चमचम, बिजली चमक रही चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। वाह, क्या खूबसूरत पंक्तियां।

लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक लिखते हैं कि सुहाने सफर को आज मौसम के रंगों में रंगकर आपके साथ हो चलेंगे और कहेंगे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी। और अभी तपती गर्मी, हम राजस्थान से दो बूंद पानी को सहेजते हुए इसी फिल्म का गीत, दो बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं, कुछ बूंदे बारिश की कितनी सुखद एहसास दिलाती हैं, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और ये सब गीत इन्हें याद आ रहे हैं और भी इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। तो एक साथी ने कुछ गाने लिखे हैं कि आज के शब्द हैं गर्मी, ठंडी हवा, धूप, छांव, रिमझिम बारिश, कतरा कतरा पानी, मौसम वगैरह वगैरह। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। यकीन मानिए साथियों, गर्मी बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी है और इतनी तपिश में सभी को शीतलता की जरूरत है, यानी ठंडी हवाओं की। और ये हवाएं हैं ना, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, ये हवाएं ना होती तो क्या होता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है, फटाफट उसका जवाब दीजिए। और वैसे अब जो गाना आप सुनेंगे, आप में से कुछ साथियों ने वही गाना चुना जो मैंने भी चुना, तो आइए हम ये गाना सुने, साथ साथ आप हमें सवाल का जवाब दीजिए।

ठंडी ठंडी हवा का आनंद देता ये गाना प्रिंस फिल्म से हमने लिया था लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत गाने से प्रोग्राम का शानदार आगाज हुआ। तो एक सखी ने लिखा है कि दिल तो है दिल मैं लिख रही थी फिर रह गई क्योंकि सब्जी वाला आ गया और भूल ही गई। क्या बात है, लेकिन हमारी और आपकी पसंद मिल तो गई।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसे दिल का कोई एतबार नहीं, वैसे सुरीले सफर में कौन सा गीत आप पेश कर दें कोई नहीं कह सकता। पहला गीत ही हमारी सोच में नहीं था, तो भाई हमारी और आपकी सोच यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गई। और हमने आपसे पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितने करीब है, तो हमारे ढेर सारे साथियों ने जवाब दिया। एक साथी लिखते हैं, जितना लबों के करीब हंसी है, जितना फूलों के करीब महक है, बस उतना ही दिल के करीब विविध भारती है। एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि आज के सुरीले सफर में आप आई हैं, तो भाई आज तो इस सफर का और भी मजा आएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में आप आए, सफर का अंदाज सुरीले गानों से होगा, आप गाने बहुत सुरीले और मधुर बजाने वाली हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज के इबारत के सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बीच गानों का मजा है, विविध भारती से दिन शुरू होता है, सुबह की शुरुआत भी विविध भारती के गाने न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनता हूं, विविध भारती को कई पीढ़ी से सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मेरे दिल के इतने करीब है कि सुबह 9 बजे जब दुकान का शटर खोलता हूं और बिजली चालू करता हूं, तो पहला स्विच होम थिएटर का होता है जिसके अंदर विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो रात को 9 बजे तक चलता है। जब दुकान का शटर बंद होता है तो आखिरी स्विच रेडियो का बंद होता है। वाह क्या बात है। वैसे साथियों आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो सुरीला सफर एक कार्यक्रम है, इसमें सवाल जरूरी नहीं कि हम गीतों से या टेक्स्ट से रिलेटेड लें, सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक साथी लिखते हैं कि सबको नमस्कार करते हुए कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में हवा पानी का दौर चल रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, गर्मी से बहुत राहत है, तो भाई गर्मी से राहत है तो ठंडी हवाओं का आनंद लेते रहें आप। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आज बहुत ठंडी और तेज हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, तो छाए हुए बादलों का भी आनंद लीजिए। और एक साथी लिखते हैं, भाई हवाएं ना होती तो जीना ही मुश्किल हो गया होता। तो दूसरे साथी लिख बैठे हैं कि दिल के करीब नहीं, दिल में है जी विविध भारती। और एक साथी ने लिखा है, आपके साथ सुरीला सफर की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है, पानी शब्द पर गाना होगा, पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, शोर फिल्म का गाना। दूसरे साथी लिखते हैं

कि तपती गर्मी में सावन का इंतजार, कतरा कतरा पानी की बूंदें अधूरी कहानी पूरी करती हैं। इस मौसम पर तो ये गाना एकदम फिट बैठता है, रिमझिम गिरे सावन। साथियों, रिमझिम बारिश की बूंदें, सोंधी मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश का एहसास, सब कुछ बड़ा ही प्यारा लगता है, है ना। बात रिमझिम शब्द की हो तो एक गाना जो आप सभी पसंद कर रहे हैं वो जहन में आता ही आता है। ये वो गीत है साथियों जिसका फिल्मांकन, जिसके बोल, गीत, संगीत, आवाज हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देती है। तो ये गाना सुनिए और बताइए जरा इस गाने के संगीतकार का नाम।

भाई मंजिल फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज में हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भी भेजा है कि चलो मेरी बनी हुई इबादत का एक गीत तो शामिल हुआ फिल्म मंजिल का, रिमझिम गिरे सावन लता दीदी की आवाज में। यहाँ हमारी और आपकी पसंद मेल खा गई। और इस गाने के लिए आप सभी ने लिखा है कि मंजिल फिल्म का गाना अमित अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर बारिश का आनंद लेते हुए। और एक साथी लिखते हैं रिमझिम गिरे सावन योगेश जी का लिखा हुआ ये गाना, सावन और बारिश की बात हो और ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी साथी इस गाने को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक बड़ी ही प्यारी सी इमोजी बना के भेज रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कुछ इन शब्दों से होकर गुजरेगा, ठंडी हवा रिमझिम सावन इंतजार पानी और मुलाकात। एक साथी ने लिखा है कि सुरीले सफर में शामिल हो रहे

सबको नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि शुरू में ही आपको ईमानदारी से मैं कह दूं कि मेरे इम्तिहान के दिन कब के लग चुके हैं, लेकिन जब आपके सफर इस सफर में शामिल होने जा रहा हूं तो लग रहा है कि फिर से इम्तिहान के दिन लौट चुके हैं। खैर, ये तो जरूर कहूंगा कि आपकी आज की इबारत इतनी खूबसूरत है कि उसकी इबादत करने की दिल में चाह है, और क्यों ना हो, उसमें एक तरफ तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडी हवा है, कहीं रिमझिम सावन है तो इसी मौसम में किसी का इंतजार है। भाई, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आगे लिखते हैं, ये इंतजार खत्म होने के बाद मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात के इस पल में मुस्कुराहट लेकर हम उससे मिलते हैं तो दिल में भी ये डर रहे कि कहीं कहानी अधूरी न रह जाए। तो कहते हैं आगे कि देखा, बातों बातों में मैंने कितना कुछ कह डाला कि सांस फूल रही है। गानों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो चलिए, फिर भी सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट और पढ़ देती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुअन के लिए तरसने लगता है, और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो।

हमारे एक साथी लिखते हैं, शुभ दोपहरिया, वेरी गुड आफ्टरनून। सुरीला सफर प्रोग्राम में आज दोपहर 1 बजे तपती गर्मी में संडे की छुट्टी के दिन आपके साथ ठंडी हवा की हल्की सी छुअन का बेसब्री से हम सभी श्रोताओं को इंतजार है। तो आपका इंतजार पूरा हो गया, कार्यक्रम चालू है विविध भारती पर। एक साथी ने कुछ गाने लिख भेजे हैं जो रिलेटेड हैं आज के टेक्स्ट से। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रिमझिम गिरे सावन, ये मुलाकात एक बहाना है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, इंतजार और अभी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, कतरा कतरा पानी है, वगैरह वगैरह शब्द और ये मेरे गीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं कि लगभग भारत के बड़े हिस्से में मानसून जैसे मौसम लग रहा है, कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश और काली घटाएं छा रही हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो पर बहुत राहत है। ऐसे मौसम में आपसे एक बारिश वाला गीत सुनना चाहूंगा। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में हम सबको खूब पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सावन तो अभी दूर है लेकिन हमें इंतजार है कि रिमझिम बारिश ही हो जाए और इस धूप और गर्मी

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म थी जैसे को तैसा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म मंजिल का गीत जिसे आरडी बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया, चलो पहले तीन गीतों में ये गीत तो हमारी पसंद का आ ही गया, आगे देखते हैं कौन सा गीत हमारा चुना हुआ बचता है। और एक साथी ने लिखा है कि रिमझिम गिरे सावन इस गीत की खासियत है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन में कर्णप्रिय है, आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

यकीनन साथियों, गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे गीत गर्मी से थोड़ी सी राहत तो दे ही देते हैं। एक साथी ने कुछ पंक्तियां लिख भेजी हैं कि गर्मी आई, धूप सुनहरी, आंगन में फैली लू की लहरी, पेड़ खड़े हैं चुपचाप जैसे ढूंढ रहे हों ठंडी पहरी, पसीने की बूंदे मोती बनकर चेहरे पर चमक दिखाती है, पर आम की मीठी खुशबू से मन में ठंडक आ जाती है, गर्मी की ये तपती बेला सिखा जाए धैर्य का खेला। बिल्कुल सच्ची बातें लिख भेजी आपने। गर्मियों से राहत के लिए हम सभी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन थोड़े से गीत संगीत भी तो ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, थोड़े से सावन का एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ, अब बस सावन करीब है, बारिश करीब है ना। एक साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, मुझे लगता है कि आज के शब्द सावन, तपती गर्मी और मुलाकात हो सकते हैं और इन शब्दों पर कुछ रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती सुनने से बहुत फायदा है, प्रोग्राम का आनंद लेते हुए काम करना, काम में कोई बाधा नहीं होती। और मंजिल फिल्म के गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि नारीमन पॉइंट के किनारे बरसात में मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन भीगते जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बरसात पर ऐसा कोई गीत इतना रोमांटिक अभी तक नहीं बना। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बीते एक सप्ताह से हमारे बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का मौसम गीला और शीतल हो गया है, मध्य अप्रैल में जून की गर्मी का प्रवेश हो गया, अभी शीतल पूर्वी के झोंके सुरूर के लग रहे हैं। सच में साथियों, बहुत जरूरी है ऐसे में पानी का बचाव भी करना और जहां तक हो सके हम अपने को हाइड्रेट रखें, भरपूर पानी पी के। और वैसे भी साथियों, पानी के साथ साथ अन्न हो या कोई भी चीज हो, उसका एक एक कतरा हमारे लिए कीमती होता है। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है।

होती है और वो अमृत के समान होती है। तो चलिए अब आपका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आने वाला है और हम उस गाने की ओर बढ़ेंगे जिसमें अभिनेत्री रेखा के बड़े ही सहज अंदाज हैं। अब बताना आपको है कि इस गाने में उनके साथ अभिनेता कौन है।

कतरा कतरा मिलती है आशा भोसले की आवाज में, इजाजत फिल्म का ये गाना था। एक साथ ही लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ग्रीष्म की तपन के पश्चात आकाश में बादल छाने लगते हैं श्वेत शाम बादलों के समूह, और ये संदेश देते हैं जन जन में प्राणों का संचार करने वाली वर्षा ऋतु के आगमन का। आकाश में छाई श्यामल घटाओं के साथ ठंडी ठंडी बयार के साथ झूमती आती है जन जन को राहत पहुंचाती है जीवन देने वाली वर्षा की पहली फुहार। और वैसे कई जगह पर अब थोड़े थोड़े बादल छाने लगे हैं, आज मुंबई का मौसम भी थोड़ा सा बदला है। एक साथ ही लिखते हैं हमारे प्रांत का मौसम बेहद खुशनुमा है, आज तो सुबह से बादल है और लगता है कि कब रिमझिम जेठ की दोपहरिया बरस जाए। और एक साथी ने लिखा है कि दो अमलतास के पेड़ हमारे घर के फ्रंट पोर्शन के गार्डन में हैं। अमलतास के इन पेड़ों से चाहे बाहर तपती धूप की गर्मी हो या रिमझिम बारिश, और हम उन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं या सड़क की तरफ कोई राहगीर इन पेड़ों की छांव में रुक जाए, ठंडी हवा की हल्की छुअन का एहसास कराते हैं ये। बात तो बिल्कुल सही है साथियों की, हम चाहे एसी लगवा लें या कूलर लगवा लें, लेकिन जो आनंद, जो सुकून, जो राहत पेड़ की छांव तले मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और कहीं नहीं मिलता, तो बस वही हाल है पेड़ की छांव का। तो लीजिए भाई, दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में से तीसरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और सभी ने लिखा है कि कतरा कतरा गाने में नसीरुद्दीन शाह जी थे रेखा जी के साथ। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, हमारी इबारत का लिखा हुआ दूसरा गीत भी शामिल, इजाजत फिल्म का रेखा जी के साथ, कर्मा फिल्म के खेरू भाई यानी कि नसीरुद्दीन शाह जी, बहुत ही शानदार नशीली दिलकश अमर आवाज, आदरणीय आशा ताई की। एक साथी ने लिखा है आज का सुरीला सफर का प्रोग्राम बहुत लाजवाब। और एक साथी लिखते हैं बहुत प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी पड़ रही है, अभी आसपास मौसम खुशनुमा हो गया है गाने सुन सुन कर। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपका गुड आफ्टरनून भाई बहुत अच्छा लगता है, तो भाई आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। एक कमेंट आया है हमारे साथी लिख रहे हैं कि हमने शब्द तो सही पकड़ लिए हैं लेकिन अभी तक एक भी गीत नहीं मेरी पसंद का आया या मेरे सोचा हुआ आया। तो दूसरे साथी लिखते हैं आपकी इबारत को लेकर मेरे मन में हजारों गीत उमड़ रहे हैं, मैं किस किस गीत का जिक्र करूं, हैरान हूं परेशान हूं, लेकिन दो गाने तो शायद आपको सुनाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने लिखा है कि हो सके तो मेरी पसंद जरूर शामिल हो। आगे लिखते हैं हमारे दूसरे साथी कि यहां धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, पंखों की जरूरत नहीं, सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। यकीनन साथियों बात मौसम की हो तो हर मौसम अपने में निराला है, खास है, वैसे बारिश के रंग तो अलग ही होते हैं लेकिन प्यार का मौसम हमें हमेशा ही जमा रखता है। कभी इंतजार, कभी मिलन, कभी जुदाई, तो कभी बेईमान सा हो जाता है मौसम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने का जिक्र कर रही हूँ, तो चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

कभी धूप कभी छांव लिए ये मौसम भी कभी कभी बेईमान हो जाता है। बहरहाल मोहम्मद रफी की आवाज लोफर फिल्म का गाना सुना आपने और आप सबको ये गाना बहुत पसंद आया। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई एक साथी लिखते हैं लो आ गया मेरी पसंद के चुने हुए गानों का आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो एक साथी लिखते हैं मौसम कोई भी हो सुरीला सफर चलते रहना बहुत जरूरी है। और दूसरे साथी ने लिखा है आज के सुरीले सफर के कार्यक्रम के गीतों से कोटा राजस्थान में भी गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है, क्या बात है। तो यही तो होता है मुलाकातों का असर। एक साथी लिखते हैं विविध भारती मेरे बचपन का साथी, विविध भारती मेरे वर्तमान समय का साथी और जब तक प्रभु परमेश्वर ने मुझे जितनी सांसें दी हैं विविध भारती मेरा साथी रहेगा। एक साथी लिखते हैं कि मैं थोड़ा कोचिंग क्लास में लेती हूँ इसलिए मैं गीतमाला में नहीं जुड़ पाई, आज संडे है, पिछले रविवार शादी में गए थे और प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है, लेकिन साथ तो है फेसबुक के जरिए, बस इस सफर में ना जुड़ पाऊँ मगर फेसबुक से रेडियो जुड़े रखना मैम, क्योंकि आपके प्रोग्राम से जुड़कर ऐसा लगता है हम आपके साथ ही बैठे हैं और हम रेडियो चैनल और ऑफिस में ही बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है विविध भारती के साथ जुड़ने में। वाह, तो ऐसे ही विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि अरे वाह प्लेलिस्ट में से चौथा गीत भी बज गया, आज मौसम बड़ा बेईमान, क्या बात है भाई, हमारी आपकी तो ये जो पसंद है वो मिल गई। एक साथी लिखती हैं कि आपकी आवाज सुनकर मन स्वर सुनकर मन शांत हो गया, मेरे श्रोता मित्रों की मीठी कमेंट्स मन को सुकून दे रहा है, आज मैं कुछ गुस्से में थी और अब सब ठीक हो गया है, फिर पहले की तरह आनंद लेकर गाना सुन रही हूँ, पॉजिटिव थॉट्स जीवन को जिंदगी से भर देते हैं। तो भाई गुस्सा क्यों, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्से को एक साइड में कीजिए और मुस्कुराते रहिए। लीजिए भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि अरे वाह मेरा कतरा कतरा पानी गीत भी मैच कर गया। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि इजाजत फिल्म का जो गीत बजा कि मेरा तीसरा गीत भी आपने शामिल कर दिया, अब स्कोर 5 गीतों पे मेरा तीसरा गीत बज गया है, क्या बात है भाई। तो दूसरे साथी ने लिखा है गुलजार साहब ने इस गीत को एक पेंटिंग जैसा फिल्मांकन किया है। तो दूसरे साथी लिखते हैं कतरा कतरा जिंदगी प्यासी प्यासी रहने दो, मौसम का अद्भुत संगम लिए ये गीत सुरीला सफर को और भी सुरीला बना रहा है और साथ ही साथियों आपके कॉमेंट्स तो इसे सुरीला बना रहे हैं। तो भाई यही तो असर है विविध भारती के साथ मुलाकातों का। तो आप तो विविध भारती के साथ रोज ही मुलाकात करते हैं, हर दिन आपका खास होता है मुलाकात का विविध भारती के साथ। वैसे आपकी जिंदगी के सुरीले सफर की कोई एक मुलाकात जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार रही हो शेयर करना चाहेंगे?

एक साथ ही लिखते हैं, विविध भारती सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। आज भी सुबह से शाम तक हमारा FM चालू रहता है। आसपास कोई नहीं है, बस विविध भारती और मैं।

एक साथी लिखते हैं कि पेड़ों की छांव का कोई मोल नहीं, कई तपस्वी भी इनकी छाया में मोक्ष पा गए। दिव्यता का स्रोत है ये पेड़, सिर्फ तन की ही नहीं मन की थकन को भी हर लेते हैं ये पेड़।

तो ये मुलाकातें विविध भारती पर यूं ही होती रहें, हम और आप हमेशा विविध भारती के साथ जुड़े रहें। ढेर सारा शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम का आज का सफर बस यहीं तक। मैं शिफाली आपसे अब लूंगी इजाजत, ढेर सारे धन्यवाद के साथ। आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को, अपने इस कार्यक्रम के सफर को और भी दिलकश खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।

नमस्कार साथियों, जिंदगी में भागदौड़ और तनाव इतना बढ़ गया है कि इस बीच हम भूल ही जाते हैं कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। हम अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुलकर हंसना क्या होता है।

इस दुनिया में हर इंसान रोते हुए ही आता है, लेकिन असली मायने उस जिंदगी के हैं जो मुस्कुराते हुए जी जाएं और हंसते हुए विदा हो जाएं। जीवन में मुश्किलें, दर्द और संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, पर जो इंसान हर हाल में मुस्कान बनाए रखता है वही सच में जीना जानता है। हंसी सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि जीने का नजरिया है, जो खुद को भी सुकून देता है और दूसरों के जीवन में भी उजाला भर देता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी पहचान हमारी मुस्कान से हो।

जिंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बस कभी कभी हम उसे बहुत ज्यादा गंभीर बना देते हैं। अगर थोड़ा ठहर कर देखें तो हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें मुस्कुराने की वजह दे सकता है। कभी किसी की बात, कभी कोई याद, तो कभी एक सुकून भरा पल। असली मजा तो इसी में है कि हम इन छोटे छोटे पलों को महसूस करें और दिल से जिएं। तो एक छोटा सा संदेश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान ना सिर्फ आपका दिन बेहतर बनाती है बल्कि किसी और के चेहरे पर भी खुशी ला सकती है ना?

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
2: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों

0: पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से एक घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यानम और माहे में होगी।
0: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से गणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें 4 बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकार

0: सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट

से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बताओ। चोरी चोरी फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर शैलेंद्र की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, जब ऐसा साथ हो दो दिलों का तो हसीन वादियां भी मुस्कुरा उठती हैं।

सूरत है भोली सी, कातिल हर कदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा

लाल बंगला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, उषा खन्ना का संगीत। साथियों, ऐसा खूबसूरत साथ जिसे देखकर कुदरत भी मुस्कुरा दे, तो फिर प्यार तो होना ही था। महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।

कली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाजनी, उस जैसी दिल नशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं। मेरा यार मेरा प्यार

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का गाना।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था।

0: पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा

0: बसेरा,
1: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया,
2: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा,
3: कैसे जियूंगा
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार,
1: नजरों से कह दो प्यार,
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: का उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: तेरे घर के सामने फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत। और अब अगले गाने में कौन सी बात होगी, कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, कुछ तो जादू था।

अनपढ़ फिल्म का ये यादगार गीत जो आज भी सुनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम के समापन हम एक ऐसे गाने से करेंगे जो थोड़ा सा चंचल है। मुकेश का स्वर, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने क्या कहता है ये गीत।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओ नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। कार्यक्रम शुरू हो मन चाहे गीत, उससे पहले ये छोटा सा संदेश आपके लिए।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथियों, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम।

यकीन मानिए, मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों के। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी। श्रीमाली, तो आपकी फरमाइश पूरी हुई। साथियों, आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतजार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के

कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हेतु रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: बसेरा,
1: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया,
2: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा,
3: कैसे जियूंगा
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार,
1: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतजार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर, और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दी जाए। इसे पसंद किया था जिला वाशिम वनोजा तांडा मैथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद कर दिल कर
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
0: तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

0: पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रहीं। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहेगी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े रह गए, बैठिए ना। मेयर साहब
2: जी,
1: आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
2: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूं ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
3: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
2: तुम ठीक कहते हो
4: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं नहीं कहिए कहिए
4: नहीं नहीं नहीं नहीं मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
4: देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ, देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
1: आप क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
4: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
5: हुजूर ने मुझे याद किया।
1: हाँ बिल्ला,
5: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
1: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बना?
4: जी आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
5: जी बहुत अच्छा।
4: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना
4: जी?
1: आपका मतलब?
4: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आपकी खुशी। डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
5: जी बात है,
4: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दे।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
4: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी। डॉबचिंस्की ये लो, चलिए
1: हुजूर, तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
4: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए।
6: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं।

0: अच्छा डॉपकिंस की, उसकी उम्र कितनी होगी?
1: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
0: मारिया तू चुप रह।
2: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी।
0: ये लो मुझे तो
2: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
0: मिश्का, मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
3: लो वो लोग आ गए।
4: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते हैं। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
5: अजी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। और एक
4: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया।

0: मिश्का, मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी, अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
1: लो, वो लोग आ गए।
2: जी, सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
3: अजी, दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक मैं
2: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेहर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
4: जी जी हाँ श्रीमान,
2: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयां खाली थी। मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
4: जी, बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
3: हुजूर, मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
2: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है।
3: जी,
2: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
5: देखा डॉबचिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी।
2: मेयर साहब जी, आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताश वाश खेलने का शौक नहीं?
3: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं अभी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
2: साहब, ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
6: बड़े लोगों के बड़े शौक।
3: अरे आओ आओ आओ, इधर इधर। ये मेरी पत्नी है एना, और ये मेरी बेटी मारिया।
2: तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
0: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए।
2: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
0: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा है।
2: क्या क्या क्या, कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन हूँ।
3: जी,
2: लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है? बताइए, बताइए, बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
0: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
2: नहीं नहीं।
0: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
2: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
0: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया, तू बीच में मत बोला कर।
2: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
0: अच्छा।
2: मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
0: काश हम जा पाते।
2: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है,

0: क्या रखा? हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ सिर्फ सिर्फ 700 रूबल।
1: 700 रूबल?
0: मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बन डब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरड डरड डरड डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिड़ियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
2: जी।
0: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं सोचने से घबरा गया, सोचा मना कर दूं, बिल्कुल मना कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत, हाँ हाँ जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते
3: हुजूर।
0: क्या हुजूर लगा रखी है? क्या कहना है
3: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
0: आराम
3: जी?
0: आराम? खैर आराम ही करते हैं। साहिबान खाना बहुत ही अच्छा था।
4: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
5: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
6: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
4: देखो जनरल साहब का नौकर आ रहा है। औसिफ, औसिफ
7: जी।
4: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
7: जी हाँ।
6: अच्छा औसिफ, साहब को क्या क्या बातें पसंद है? मेरा मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
5: औसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
6: तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं? भागो यहाँ से तुम दोनों,
4: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते।
7: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
6: अच्छा।
7: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
6: ये तो होना ही चाहिए। ये तो
7: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
6: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी?
7: जी हाँ खूब सोया।
6: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है? खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती।
7: आपकी बहुत कृपा है।
6: तो भैया तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
7: अच्छा मैं जरा देख रहा हूँ कहीं मालिक जाग ना गए।
6: जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
8: कुछ फरमा रहे?
7: कुछ फरमा रहे थे
8: जैसा भाई। मेरा ख्याल ये है, ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें। इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
6: ठीक है।
8: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
6: जी
8: आप इधर आ जाइए
6: जी।
8: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ
6: जी। बहुत अच्छा।
9: और हम,
6: हमारा क्या होगा?
9: हमारा क्या होगा?
8: मिस्टर बॉब डॉब, आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े हैं।
10: जज साहब मेरा एक सुझाव है
8: जी,
10: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
8: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा? कहिए क्यों पोस्टमास्टर साहब?
11: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
10: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
8: नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
10: बाप रे किसी

0: बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
1: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है, ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा है।
0: बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
2: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
0: जी।
2: कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई, लेकिन औसिफ प्यारे मजा आ गया। दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
1: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
2: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
1: अच्छा,
2: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
1: अच्छा,
2: कि मैं कोई बहुत बड़ा असर
1: हूँ।
2: आइए तशरीफ लाइए। आसिफ तुम जाओ।
3: मैं इस डिस्ट्रिक्ट का शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ।
2: बैठे बैठे आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा है।
3: हुजूर ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था। और
2: अरे मिस्टर ल्यापकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है।
3: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है।
2: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
3: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
2: ये देखिए कितने सारे नोट हैं। अरे भाई आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
3: यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
2: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
3: बाद में ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमून छन खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
2: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं, बेचारा 400 रूबल दे गया।
0: श्रीमान मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता
2: हूँ। हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है।
0: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
2: कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं।
0: जी है।
2: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
0: जी
2: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया, और नतीजा ये कि तब से जेब में 1 पैसा भी नहीं है
0: जी। हो हुजूर, अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
2: ठीक है ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार समझिए
0: जी। मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
1: जी?
2: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए
1: जी। मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
2: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानी का मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
1: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए मैं जज, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका न कोई ईमान है न चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
2: की। अच्छा? मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए ऐसा कीजिए एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
1: जरूर।
2: देखिए यहाँ आते हुए रास्ते में ना जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया।
1: अच्छा।
2: अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
1: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
4: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंची हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
5: श्रीमान मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
1: जमींदार।
2: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए आपके पास कुछ पैसे होंगे?
4: पैसे?
2: अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
4: विश्वास कीजिए मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
5: क्षमा कीजिए मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ।
2: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
4: डॉबचिंस्की तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
5: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
4: अरे ध्यान से देखो तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक।
2: अरे अरे आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ आप लोग यहाँ किसी काम जाए?
4: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं
5: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
2: इसमें क्या है? मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा।

0: धन्यवाद श्रीमान,
1: नमस्ते,
0: धन्यवाद श्रीमान।
2: कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाँकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपी चिकन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपी चिकन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
3: मालिक, मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
2: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना।
3: बहुत अच्छा मालिक।
2: अरे सुनो सिर्फ
3: जी,
2: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
3: बहुत अच्छा।
2: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
3: बहुत अच्छा।
2: अच्छा, जरा रुको, जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
3: बहुत अच्छा।
2: बाकी मिलने पर तुम्हारा हलस्त को, मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
3: सर।
2: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
4: मैं आ सकती हूँ?
2: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
4: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
2: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध-बुध भूल जाता हूँ।
4: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
2: क्यों नहीं, काश काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
4: प्यार? वो क्या होता है?
2: ये भी जान जाएंगी। मेरे मेरे नजदीक आइए।
4: हम सीधे सादे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे जाने दीजिए।
5: मारिया, तू यहाँ, ये क्या बदतमीजी है?
2: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता। मैं इन्हें जीवन संगी नहीं बनाना चाहता हूँ।
5: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाती और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
4: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
2: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
6: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
5: इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं, साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
6: मूर्ख कहीं की। हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा, ये तो शुरू से ही मूड मती रही
2: पर
6: है।
2: ये सच कह रही हैं, मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
6: हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं।
2: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
6: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से, इंस्पेक्टर जनरल से। ओ एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
3: हुजूर, गाड़ी तैयार है।
2: हम अभी आते हैं।
6: क्या हुजूर, यहाँ से विदा हो रहे हैं?
2: हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
6: ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर, इस वक्त आपके पास पैसे कम हो।
2: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल।
6: तो सेवा में कितना पेश कर
2: दूं? आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
6: ये लीजिए, एकदम नए नोट है।
2: नए नोट, नई आशा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
4: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
2: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
6: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा और आखिरी भाग, ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम ब्रिजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या
0: 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का ही प्ले खेला, जो जिसमें अमजद को ऐ मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा, यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी

0: कृष्ण चंद्र की जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पे बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
1: जी।
0: तो कादर खान हमारे प्ले में मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
1: अच्छा।
0: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे जेल आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, कहते यार मुझे दो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले दो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चलो रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना।
1: हाईजेक हो गया प्ले।
0: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
1: हाँ।
0: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
1: जी,
0: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
1: इस बार वो ले गए।
0: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे।
1: हाँ।
0: के एम मुंशी की वाइफ
1: जी,
0: भारतीय भवन के मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
1: हाँ हाँ।
0: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था, या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
1: बाद में फिर शुरू हुआ,
0: फिर वो उधर बहुत बाद में किया, अभी किया
1: जी।
0: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
1: जी,
0: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
1: तब तक आपकी उम्र क्या थी?
0: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था, समझिए 23 साल।
1: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल,
0: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात हो गई। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
1: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले खत्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ मुझे ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूंगा फिर करूंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कम्प्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है, और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी
1: आगे
0: चला। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर।
1: हाँ हाँ।
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है, इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वह कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म, अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, अठन्नी में पिक्चर
1: काम बन जाता था।
0: काम बन जाता
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर

0: का नाम लोग मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सच्चा जीतरे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, विश्वनाथ की सारी,
1: मतलब
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था पांच आने में, वहां पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था, उठा के पीछे कर देते थे। जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था, लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो पांच आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे। बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
1: हाँ,
0: देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती छुट्टी रहो सब। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमत भी देखा ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ और मैंने कहा ये क्यों

0: कर लें अचानक, वो बीआर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपना उस तरह ही सोचने लग गया। जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर ले तो, सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था, तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने विदाउट आर्टिस्ट है, उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना, लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे जोश वाले, तो हमने वो शॉट जर्सी के पेपर लिया और वो शॉट ले लिए,
1: वाह वाह।
0: तो जर्सी की अचानक आंख खुली, तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो जर्सी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो तो उस वक्त तो देख नहीं सकते, तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए हुए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया वो चीज, उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीजें देखी, वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कंप्लीट हो गई 1 महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया, कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ 2-4 दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे, तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ,
0: और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा आप देखने आइए, तो कह रहे बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, 4-5 शो के बाद आता हूँ, बोला आज देख लीजिए फिर 5वां फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ, फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरन का एक आदमी आया वो चाहता है कि फिल्म बनाऊं यहाँ पे, नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं 3 पिक्चर बनाऊंगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप 3rd असिस्टेंट रख लीजिए 5वां रख लीजिए, मैं आऊंगा। तो मैं उनको फॉरन वाले को मना

0: तो जैसे ही तब यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर, मैंने बताया आपको, सचिवालय में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सचिवालय में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आजाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपए महीना मिलता था सचिवालय में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपए मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना आप दे दीजिए, मैं ले लूंगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपए रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपए का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपए में, तो 30 रुपए महीने का मेरा वो खर्च।

0: बाद में उनकी गाड़ी होती थी, उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पालील पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी का, तेरे को छोड़ के आ जाएगा। वो मुझे वहां छोड़ देता सर, मैं आ जाता। तो इन चीजों में जो लिंक वाले बातें याद आती है याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बंबई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर, रमन कुमार, तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक बीएसटी की स्ट्राइक हो गई थी,
1: जी
0: तो ट्रक वाला चोनी लेता था, आठ आने लेते थे। और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे, इनके डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए, और हम लोग सब जो है बैठे वो, तो हम दादर सब लोग उतरते थे वहां से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहां भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहां से किंग सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, कलर की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर बीए जब इन्होंने इनके संग की थी, वहां नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है बचपन से साथ में थे उनके, तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर, भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोडक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीजें कर कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यू भी लिखता था, डायलॉग भी देता था, तो वो सारी चीजों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती
0: ट्रेनिंग हो गई।

0: साहब करते करते पहले ही में और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा अपने आप खाओ, ठीक है ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश तू क्या कर रहा है। मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है वो ले गया मुझे वहां पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीजों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पे जाके अंदर लेट ना हो जाऊं, और एक दिन मैं लेट होगा तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ। सॉरी आंदा नहीं होगा। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
1: हीरो हो गई।
0: हाँ और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोलो रमेश लिख दो वहां पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो, अचानक में नजर मुझे पड़ेगी बहुत लंबे लंबे डायलॉग है।

0: कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो वो मैंने लिख दिए वहां पे। उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूं क्यों गया। तो ऐसा भी किस्सा, तो अलबत्त खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की। अब मुझे यकीन कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो मैं।
1: लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपर हिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: गाने बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यशजी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग वूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया। तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात में बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वो जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है, वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन में एक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी।

0: तो वैसे ही पॉइंट में बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चर है बहुत देखिए, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है ये आपको हूट कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: तो इंटरकॉलेजिएट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्ता एनीवेज वहां देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी। देव साहब ने कहा, यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं?
1: अरे बाप रे।
0: तो जज ने कहा, पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था,
1: हाँ।
0: पहले मुझसे बोला हुआ था, पूछो, मैंने बोल दिया है कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो। तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली, तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने,
1: हाँ हाँ।
0: तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाए,
1: हाँ।
0: तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया।
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ।
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है,
0: पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी।
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों रहा, लिखा बच्चे के हाथ में, मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं। तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है,
1: हाँ।
0: फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई,
1: हाँ।
0: मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: हाँ। तुम मुझे
0: कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ
1: बैठा हूँ,
0: हाँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने 25 हफ्ते फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज नरेशन में ये सब मत बोलो,
1: हाँ।
0: चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
0: अब था कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी,
1: हाँ।
0: और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को
1: जी।
0: पालील पे, और मुझे कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का,
1: हाँ।
0: इंग्लिश
1: शॉर्ट,
0: शॉर्ट शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे, अब तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी होगी थी वो,
1: हाँ। जंजीर,
0: जंजीर, तो अब तो मैं हीरो हिट होगा हूँ,
1: हाँ।
0: तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें, समथिंग,
1: हाँ।
0: कुछ छोटा मोटा, सलीम जावेद भी साथ में थे,
1: हमने
0: कहा लेकिन ये शूट ज्यादा करता है अमिताभ बच्चन,
1: हाँ।
0: अगर आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज्यादा शूट करेगा, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए, और इनकी डेटे भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे,
1: हाँ, वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वो ही था, हाँ। उनको छोटे भाई का रोल करना था,
1: हाँ।
0: अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है,
1: हाँ।
0: अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना, उससे बेटर रोल है कभी कभी मैं आपका, दोनों पिक्चर जैसे चोपड़ा कर रहा है, खुद के लिए एक
1: गुलशन राय की,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए,
0: हाँ, कोई बोलते सर बीज डाल रहे कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है, जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
1: मैसे
0: बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया,
1: हाँ।
0: कि भाई देखिए लेंथ वाइज हुआ है, पर छोट लो, मैं इसका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे, जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए, ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है। इन लोगों ने भी सलीम जावेद ने कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला,
1: बिल्कुल
0: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ, अरे भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट हो गई साहब।
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे?
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
1: आप चीफ असिस्टेंट हो,
0: अब हो गया सब जगह, तो वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
0: गाने में शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम ढिल्लों, दो ही गाने थे। कौन थे उसमें उनकी

0: हीरोइन
1: नीतू सिंह,
0: नीतू सिंह, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए। क्या होता था, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
1: मंगेश देसाई प्री रिकॉर्डिस्ट, बहुत बड़े,
0: बहुत बड़े, मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था,
1: हाँ।
0: अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और जज जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात को करते होते फौरन कहने लगे, भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो जज जी ने कहा क्यों भाई, बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: हाँ, वो आपने नरेशन के समय
0: वही क्या। तो कहने लगे नहीं बेटा, वो थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स होता है देवन और हमारे गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पे गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: एक जो इनका था देवन वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट दिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो उसमें नहीं रह सकती, यो निकाल दीजिए। तो जी ने कहा भाई ऐसा है मंगेश जी, नहीं हम पीछे, हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, जैसी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज्यादा वो सब बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते, 25 हफ्ते, 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा चलिए वो सही।
1: हाँ।
0: तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज। तो कहने लगे ठीक है, हम आपकी अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ,
0: कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा था मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना।
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: उन्हें कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था, तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार, प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, वो अनाउंस हुई है स्क्रीन में, उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चर का नाम ए से होता था। बाद में कुछ आपस में जो भी होगा, नहीं बनी पिक्चर, हो इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके
0: थे। मैं बन चुका था,
1: तब तक तो
0: बसेरा आगे थी।
1: हाँ।
0: बसेरा आगे थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए,

0: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने के भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
0: हाँ
1: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
0: वो भी आपके दोस्त।
1: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
0: जी जी।
1: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
0: हाँ।
1: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
0: हाँ हाँ
1: भाई, जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार था।
0: जी जी।
1: अब तो डायलॉग लिखने हैं, इसमें डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए।
0: जी जी जी।
1: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर जो 2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी।
0: क्या गजब बात है। फिर
1: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं हमको 21 अभी मिले नहीं है, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उसको पिक्चर।
0: अच्छा अच्छा।
1: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
0: हाँ।
1: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई। तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं मुझे साथ ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या? कहा आपने मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पे जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे,
0: जी
1: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को ऐसा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
0: पीछे से।
1: हाँ थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
0: जी
1: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। मेरी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
0: हाँ।
1: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी।
0: करेक्ट है।
1: और मैंने बाकी पिक्चर जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। ये अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
0: जी।
1: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
0: ओए
1: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
0: हाँ।
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी,
1: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
0: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
0: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। उजाले।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की अनुपम भेंट लेकर मैं आपके साथ छाया गीत के सफर में दिलों की दास्तां बयां करूंगी। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है, आंखों ही आंखों में इशारों की बरसात हो रही है, बातों ही बातों में मोहब्बत के सिलसिलों की शुरुआत हो रही है। उनके आने की आहट से दिल की धड़कनें बेताब हो रही है।

बड़ी कातिल अदाएं उनकी हैं, जरा बच के रहिएगा उनसे मुलाकातों में, कहीं दिल घायल करके वो दामन न छुड़ा लें। ये सोच के तबीयत बड़ी नासाज हो रही है, हाले दिल कुछ वो कहें कुछ हम कहें तो धड़कनों को सुकून मिले।

इंतजार के इंतहा हो गई। वो आए भी मगर चिलमन के पीछे से एक झलक दिखलाकर हौले से मुस्कुराकर जाने लगे। बड़ी बेताबी थी उनके दीदार की। गनीमत इतनी हुई कि दामन उलझकर चिलमन से लिपट गया और आंखों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। काश वो पल वही ठहर

0: अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है।
1: इंतजार के आलम में कुछ ख्वाब बुने थे, हकीकत में जब उनका सामना हुआ तो उलझ कर रह गया दिल उनकी निगाहों में, आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार हो रहा है।

वो रूठे रूठे से हैं, होंठ चुप हैं, पर नजरों से मुस्कुरा रहे हैं। वल्लाह क्या अदा है, सितम भी ढा रहे हैं, प्यार भी जता रहे हैं। गिले शिकवे तो बेहिसाब थे, पर एक नजर के वार ने सारे ढा दिए। बस अब प्यार है, इजहार है, दिले बेक

शमा ने कहा परवाने से, मत पास आ जल जाएगा। शमा को क्या पता जलने में क्या मजा है। जल जल के फना होना तो फितरत है परवाने की, मोहब्बत को आजमाने की, जल जल के मिट जाने की।

तस्वीर उभरती है आंखों में, फिर अश्कों में धुंधली हो जाती है। प्यार की कशिश ऐसी है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता, जिससे होता है बस उसी से होता है। चोरी, चोरी।

छाया गीत के सफर में आज यहीं तक, मिलेंगे फिर कभी इसी वादे के साथ। मंजरी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: तराने नए पुराने।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का तराने नए पुराने कार्यक्रम में।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं रेफ्यूजी फिल्म का ये गाना। आवाजें सोनू निगम, अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार थे अनु मलिक। फिल्म का नाम रिफ्यूजी था। यह है रामलखन फिल्म का गीत आवाज़ें मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की।

0: राम लखन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बसेरा,
1: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया,
2: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का पंजाबी।
0: 1993 फिल्म साहिबा,
3: कैसे जियो
0: रंगमंच और सिनेमा के जानी माने निर्देशक रमेश तलवार,
1: नजरों से कह दो
0: उजाले उनकी यादों के 10 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में कृष फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन ने इसकी धुन बनाई थी। अब आपको सुनवा रहे हैं तराने नए पुराने कार्यक्रम में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गाना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: सुन रहे।
1: इसी के साथ पूरा होता है कार्यक्रम तराने नए पुराने। यह विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आप सुन रहे विविध भारती का

नागपुर केंद्र एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। प्रतीक्षा समाचारों की चंद लम्हों के लिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की

यह है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बज चुके हैं। कुछ ही पलों में फौजी भाइयों के लिए पेश की जाएगी विशेष जयमाला। आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। इंतजार चंद लम्हों का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत शौर्य गाथा। फौजी दोस्तों को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। ये वाक्य अपने अंदर निस्वार्थ बलिदान की भावना को संजोए हुए है। एक सैनिक को सबसे ज्यादा अपने देश से प्यार होता है। वो दूर रहता है अपनों से, क्योंकि सारा देश ही उसका अपना परिवार होता है। आजादी के रखवाले, देश की सीमा के पहरेदार, देश पर जान न्योछावर कर देने वाले हमारे जांबाज सैनिकों के रोम रोम में देशभक्ति का जज्बा भरा होता है। फिर चाहे वो अनंत आकाश के विस्तार को चुनौती देकर अपने देश की रक्षा करनी हो, या समुद्र की गहराई में जाकर अपने देश के लिए जंग लड़नी हो, या फिर जमीन और पर्वत पहाड़ों पर असहनीय ठंड गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो, हर मोर्चे पर हमारे सैनिक विजय पताका फहराते हैं। फिर चाहे उन्हें उस विजय के गुलिस्तान को खिलाने के लिए अपने खून से ही उसे क्यों न सींचना पड़े। ये हमारे वीर सैनिकों के देशभक्ति का जज्बा और अद्भुत साहस ही है जो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ही सिर्फ सोचने भर से दुश्मनों के पैर कांपने लगते हैं। वीरता और सर्वोच्च बलिदान का पर्याय है हमारे फौजी साथी, जिनके अदम्य साहस की कहानियां हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास बड़े ही गर्व के साथ कहता है। शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है।

फौजी दोस्तों, आज हम जिस जांबाज फौजी के साहस और देशभक्ति के जुनून की गाथा लेकर आए हैं वो है देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार, जो कि कारगिल युद्ध के हीरो के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारे त्योहारों में खुशियों की रौनक इसलिए है क्योंकि सरहद पर हमारे देश का सैनिक अपनी जान हथेली पर लिए खड़ा है, जो सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, जो हथेली पर रखकर जान हमारी हिफाजत का जिम्मा उठाते हैं। ऐसे जांबाज सैनिक हमारे देश की आन बान और शान हैं। देश के ऐसे वीर जवानों को देश का सलाम है।

फौजी दोस्तों, अदम्य अद्भुत अकल्पनीय शूरवीरता से परिपूर्ण नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के एक गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। दिगेंद्र बचपन से ही सैन्य माहौल में पले और बड़े हुए। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर जवान थे। वर्ष 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। यानी वीरता और जांबाजी तो दिगेंद्र के खून में दौड़ती थी। अपने पिता से प्रेरित होकर दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। फौजी दोस्तों, दिगेंद्र कुमार की शूरवीरता इतनी अद्भुत और अदम्य थी कि राजपूताना राइफल्स में भर्ती के 2 साल बाद यानी वर्ष 1985 में दिगेंद्र कुमार को श्रीलंका के जंगलों में प्रभाकरण के खिलाफ अभियान के लिए गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान एक ही दिन में दिगेंद्र ने आतंकियों को मार गिराया, दुश्मन के गोला बारूद का ठिकाना नष्ट किया और उनके कब्जे से पैरा ट्रूपर्स को छुड़ा लिया। इसके अलावा जब वो अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में पुल के नीचे से कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंका। दिगेंद्र ने बड़ी बहादुरी से उस ग्रेनेड को कैच कर लिया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया, जिससे बहुत से आतंकी मारे गए। हम जमी को तेरी नापाक ना होने देंगे, तेरे दामन को कभी चाक ना होने देंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अद्भुत साहस और वीरता के साथ इतने आतंकियों के साथ लोहा लेने के बाद दिगेंद्र कुमार को कुछ साल के बाद कश्मीर के कुपवाड़ा में भेज दिया गया। कुपवाड़ा में भी उन्होंने आतंकियों का काम तमाम करना जारी रखा। अपनी निर्भीकता और जांबाजी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके लगभग एक साल के बाद यानी वर्ष 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरत बल दरगाह को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फौजी दोस्तों, ये निर्भीक और बेबाक जांबाज योद्धा यही नहीं रुका, अभी तो उसे अपनी मातृभूमि के लिए और भी बहुत कुछ करना था। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।

ये इस जांबाज योद्धा की वीरता के अद्भुत किस्से ही थे जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दे दिया, कोबरा। अब तक दिगेंद्र कुमार नाइक दिगेंद्र कुमार कोबरा के नाम से जाने जाने लगे थे। वर्ष 1999 के आते आते तो नायक दिगेंद्र कुमार कोबरा सेना के बेहतरीन कमांडो में गिने जाने लगे थे। वर्ष 1999 वही साल था जब दुश्मन ने धोखा देकर भारत की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना जबरन कब्जा जमा लिया था। ये चोटियां इतनी ऊंचाई लिए हुए थीं कि दुश्मन को इसका बहुत फायदा था। यही वजह थी कि इन पर वापस नियंत्रण पाना भारतीय सेना के लिए इतना आसान नहीं था। बहुत ऊंचाई और दुर्गम रास्तों की वजह से ये लड़ाई दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन दुश्मन के सामने भारत के वीर थे जिनके शौर्य और वीरता के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सिर झुका लेती है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है।

0: फौजी दोस्तों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं शौर्य गाथा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। फौजी दोस्तों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित जांबाज नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा। फौजी दोस्तों, 15,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग की पहाड़ी को आजाद कराने के लिए नायक दिगेंद्र कुमार की जबरदस्त प्लानिंग ने तत्कालीन आर्मी चीफ वीपी मलिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। इससे पहले इस पहाड़ी को आजाद कराने के 3 प्रयास किए जा चुके थे जो असफल हो गए थे। कारगिल की लंबी लड़ाई के दौरान पहली विजय दिलाने वाले थे नायक दिगेंद्र कुमार। कारगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जमीन वापस पाने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। आर्मी चीफ वीपी मलिक ने नायक दिगेंद्र कुमार की युद्ध की जबरदस्त प्लानिंग सुनकर तोलोलिंग की पहाड़ी पर फिर से कब्जा करने की जिम्मेदारी 2 राजपुताना राइफल्स को सौंप दी। अब 2 राजपुताना राइफल्स का दल पूरी बहादुरी के साथ तोलोलिंग की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और इस दल की अगुवाई कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। इस दल में नायक दिगेंद्र कुमार भी थे। करीब 14 घंटे तक चट्टानों पर खड़ी चढ़ाई करने के बाद ये जाबाजों का दल तोलोलिंगी की पहाड़ी पर पहुंचा, जहां पर दुश्मन देश ने 11 बंकर बना रखे थे। जैसे ही ये दल आगे बढ़ा, दुश्मन देश के सैनिकों ने भीषण गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इतनी भीषण गोलीबारी और उस पर खराब मौसम दल को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी बीच नायक दिगेंद्र कुमार ने आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ पत्थर के बीच डाला और दुश्मन की फायर करती हुई मशीन गन की बैरल उनके हाथ आ गई। इसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड निकालकर बंकर के अंदर फेंका, जिससे पूरा बंकर पूरी तरह से नष्ट हो गया।

के बंकर के तबाह होते ही घात लगाए बैठा दुश्मन पूरी तरह सतर्क हो गया और इसके बाद दुश्मन की सारी मशीन गने भीषण आग उगलने लगी और इस भीषण फायरिंग की चपेट में मेजर विवेक कुमार गुप्ता और कुछ भारतीय सैनिक आ गए और वो वहीं देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इतनी भीषण फायरिंग में दल की अगुवाई कर रहे मेजर विवेक गुप्ता और कुछ सैनिकों की शहादत हो जाने के बाद भी नायक दिगेंद्र कुमार ने अपना हौसला नहीं खोया। इस गोलियों की बरसात में दिगेंद्र कुमार को 5 गोलियां लगी, लेकिन ये गोलियां भी उनके हौसले को ठंडा नहीं कर सकी बल्कि उनके गुस्से की आग को और भड़का गयी और उनके जीतने की जिद को और बढ़ा गई। दिगेंद्र ने आगे बढ़ना जारी रखा और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए दुश्मन के बंकरों पर ग्रेनेड फेंककर उनको तबाह करते जा रहे थे। जब अपने बचे हुए सैनिकों के साथ दिगेंद्र आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक पीछे से हमला हुआ और उनके कुछ साथी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ये कोई आसान शिकार नहीं थे बल्कि ये तो माँ भारती के शूर वीर रणबांकुरे थे जिनकी वीरता का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। दिगेंद्र कुमार और उनके साथियों ने 30 हमलावरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कुछ दवाइयों और दर्दनाशक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए दिगेंद्र और उनके साथी लगातार आगे बढ़ते गए। बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए दिगेंद्र और उनके साथियों ने सभी 11 बंकर तबाह और बर्बाद कर दिए। 11 के 11 बंकर तो तबाह हो गए लेकिन दिगेंद्र के साथी सैनिक भी इस भयंकर युद्ध में शहीद हो गए और सुबह होते होते दिगेंद्र के आखिरी साथी सरदार सुमेर सिंह राठौर को भी गोली लग गई। अब नायक दिगेंद्र कुमार ने अपने साथी की मशीन गन उठाई और पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। उसी वक्त दिगेंद्र के सामने अचानक से दुश्मन देश की सेना का मेजर आ गया। जैसे ही दुश्मन देश के मेजर से दिगेंद्र का आमना सामना हुआ तो दिगेंद्र ने गोली चलाई, लेकिन तभी दुश्मन देश के मेजर ने अपने पिस्तौल से गोली चला दी जो दिगेंद्र के लगी, लेकिन अब तक उसकी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और वो मेजर दिगेंद्र पर झपट पड़ा और लड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नायक दिगेंद्र कुमार ने उस दुश्मन देश के मेजर की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और अपना खंजर निकालकर दुश्मन देश के उस मेजर की गर्दन काट दी। भारत के बहादुर सैनिकों ने अपनी बहादुरी और जांबाजी से एक बार फिर से देश के हिस्से में विजय लिख दी थी। सुबह सुबह बुरी तरह घायल लेकिन देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतार देने के बाद भारत के इस शूरवीर नायक दिगेंद्र कुमार ने तोलोलिंग की पहाड़ी पर देश की आन बान और शान तिरंगे को लहराकर देश के दुश्मनों को ये संदेश दिया कि भारत के जांबाज सैनिक देश की रक्षा में खड़े हैं और उनके होते कोई देश की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता। और इस शूरवीर जांबाज योद्धा नायक दिगेंद्र कुमार को उनके शौर्य और अद्भुत अदम्य अकल्पनीय साहस और वीरता के लिए सम्मानित करते हुए

देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जोश में आते हैं दरिया की रवानी की तरह, खून दुश्मन का बहा देते हैं पानी की तरह, रण में बिफरे हुए शेरों की तरह लड़ते हैं, साफ कर देते हैं दुश्मन को जिस युद्ध में ये पड़ते हैं।

फौजी दोस्तों, एक सैनिक अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के सामने और कुछ याद नहीं रखता, फिर चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो। इस कर्तव्य को निभाते हुए एक सैनिक के लिए देश सर्वोच्च सर्वोपरि होता है। फौजी साथियों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार कोबरा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, संपादन मनीषा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया तेजश्री कांबले ने। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

ये विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा देश की सुरीली धड़कन ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनिएगा कार्यक्रम हवा महल। इंतजार चंद लम्हों का।

कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशा मिश्रा की लिखी नाटिका अटरिया पे चोर, निर्देशिका कमला सक्सेना।

0: भाई बहुत है।
1: आप इतना अच्छा इंतजाम करें और हम मिला खाए ही रह
2: जाए। शादी के दावत के नाम पर दो तीन दिन पहले उपवास करना शुरू कर।
3: अरे भाई आपका गनीमत है, वरना इन जनाब का तो ये हाल है कि शादी के घर में जाते हैं और फिर पलंग पे ही लाना पड़ता है।
4: भैया भैया सुनिए तो
5: क्या है रघु, इधर तो आइए।
6: अरे रुके रहो भाई, अभी तो दूल्हा दुल्हन को देवी के मंदिर ले जाना है।
4: अरे भैया आप जल्दी इधर तो आइए।
5: क्या है रघु, तुम इतने घबराए क्यों?
4: भैया हम लोग लुट गए भैया, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे।
5: क्या कह रहे हो, दूल्हा दुल्हन तो ठीक है ना?
4: वही तो भैया, वही तो।
5: अरे क्या वही तो, वही तो, कहीं उषा की तो कोई बात नहीं?
4: भैया आपको कैसे बताऊं, मुझे पता चला है कि दूल्हे के भेष में राकेश नहीं कोई और है।
5: क्या भक्ति हो, अरे बाप रे, अरे मैंने खुद राकेश को ट्रेन से हाथ पकड़ कर उतारा था। जनवासी में सहरा बंदी शुरू होने तक मैं वहां राकेश को देख कर आया हूँ। सुधीर भी वही था, राकेश उसका दोस्त है।
4: सहरा वही है भैया, लेकिन दूल्हा बदल गया है। सहरे के भीतर राकेश नहीं कोई और है।
5: अरे ये तो गजब हो गया, आप तो फेरे भी हो चुके हैं। जाओ जाओ जल्दी से अपनी भाभी को भीतर वाले कमरे में बुला लाओ, मैं अभी आया।
7: हाय हाय, ये क्या गजब हो गया, किस चोरों चक्के के साथ फेरे ले ली मेरी लड़की ने।
4: कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि ये चोरों की हरकत हो और वो दुल्हन के गहने और शादी का माल लेकर भाग जाना चाहते हैं?
7: हाय, कहीं हमारे घर डकैतों का घेरा तो नहीं पड़ गया है? हा? अरे लड़के का बाप तो वही है ना कि वो भी बदल गया।
5: कैसी बातें करते हो, राघवेंद्र जी की तबीयत ट्रेन में ही खराब हो गई। हाँ। तू भी जनवासे में ही लेट गए।
7: अच्छा,
5: मैं बड़े भैया को उसके पास छोड़कर आया था। सुधीर भी वहीं रुक गया। अरे अब डॉक्टर है तो कब काम आएगा, शादी का सारा काम तो लड़के के चाचा ने किया।
7: अरे वो तो असली है ना?
5: हाँ हाँ असली है, एकदम असली। वो तो पूरे समय लड़के के साथ ही लगा हुआ था, लड़के से कुछ बोलने ही नहीं दिया उसने। मुझे कोई शक नहीं हुआ, नहीं तो देख लेता उस कभी नहीं दगाबाज को।
4: दूल्हा भी कहाँ बैठा है भाभी?
5: अरे मत कहो दूल्हा उसे, मैं अभी उसे पुलिस के हवाले।
7: अरे अरे सुनिए तो, क्या करते हो, हमारी लड़की का क्या होगा? अरे वो तो कहीं की नहीं रहेगी।
4: लेकिन भाभी अभी दूल्हा है कहाँ?
7: अरे वो अटारी वाले कमरे में दुल्हन और उसकी सहेलियों के साथ बैठा हुआ है।
4: क्या, वही तो मैं केश बॉक्स अलमारी में रखकर आया हूँ। शादी के चांदी के बर्तन भी उसी अलमारी में रखे।
7: हाय राम। अरे देवर जी, सबसे बड़ी बात तो उषा सारे गहने पहने वही बैठी है।
4: अच्छा,
7: और लड़कियों के बदन पर भी तो कितने सारे जेवर है।
4: सुना है आजकल चोरों के गिरोह इसी तरह चोरियां करते हैं, एक अंदर घुसकर सारा भेद ले लेता है और फिर मौका देखकर बाकी लोगों को अंदर बुला लेता है।
7: लेकिन वो असली दूल्हा कहाँ चला गया?
4: कुछ भी कहा भैया, मैं अभी पुलिस को फोन करके आता।
5: हाँ, जाओ, जाओ।
4: ना जाने कितने लोग हैं। हाँ। कौन है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भैया। भाभी तुम जाकर उषा को संभालो जरा, मैं अभी आया।
7: ठीक है।
5: ये सुधीर भी अभी तक जनवासे से नहीं लौटा, कहने को लड़की का बड़ा भाई है।

0: पर पूरी शादी में एक बार भी दिखाई नहीं दिया। क्यों मनोरमा?
1: हाँ।
0: क्या उषा को भी दूल्हे पर शक नहीं हुआ?
1: अरे दूल्हा तो जब से आया है सेहरा हटा ही नहीं रहा है। उषा की सहेलियों ने बहुत जिद की, सेहरा हटाकर मुंह दिखाने कहा तो उसने कहा कि उसकी माताजी ने कसम दिलाई है। अच्छा। कि जब तक फेरों के बाद दुल्हन के साथ मंदिर जाकर देवी पूज नहीं आएगा तब तक अपने चेहरे से सेहरा नहीं हटाएगा।
0: वो क्यों?
1: अरे कहता है हम अर्जुन के वंशज हैं। अर्जुन ने जब सुभद्रा का हरण किया था तो अपने चेहरे को दाढ़ी और जटाजूट में छिपाया था और देवी के मंदिर में अपनी दाढ़ी और जटाजूट देवी को अर्पण की थी। हम भी इस रीत का पालन करते हैं पर दाढ़ी की जगह सेहरा रखते हैं।
0: अरे बकार है, चालबाज है। उषा क्या कर रही है?
1: अरे वो कब क्या करेगी, वो बैठी है वहाँ। और क्या
2: भैया, मैंने पुलिस को फोन कर दिया।
0: बहुत अच्छे,
2: पुलिस आते ही मकान को घेर लेगी। डीएसपी साहब खुद आ रहे हैं।
0: अच्छा,
2: क्योंकि एक अंतर प्रांतीय चोरों का गिरोह यहाँ आजकल आया हुआ है। वो लोग इसी तरह बारात में फैल जाते हैं, फिर बिजली का फ्यूज उड़ाकर शादी वाले घर को लूट लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग सब अटारी पर चलो। रघु तुम मेरी पिस्तौल निकालो, होशियारी से कमरे के बाहर से ही दूल्हे को घेरे रहना।
2: हाँ।
0: मैं डीएसपी साहब से मिलकर फौरन ऊपर आ जाऊंगा।
2: अच्छा। लड़के वालों को ये बात बता दे भैया।
0: अरे नहीं नहीं, दुश्मन को खबर हो सकती है।
1: हाँ।
0: सब काम होशियारी से और चुपचाप होना चाहिए। तुम लोग चलो चलो, मैं अभी आया।
1: हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। अरे मैंने तो मंडप के दिन सारे देवी देवता पूजे, सब विघ्न बाधाओं को मटके में बंद किया कि शादी जरा राजी खुशी से हो जाए। हे भगवान,
2: पहले तो उषा शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी।
1: हाँ।
2: अब बड़ी मुश्किल से मानी तो ये मुसीबत आ गई।
0: रघु तुम भी क्या औरतों जैसी बातें करते हो, जाओ तुम लोग कमरे के बाहर से दूल्हे पर निगरानी रखो। मैं पुलिस के आते ही ऊपर आ जाऊंगा।
1: अच्छा,
0: जाओ,
1: अच्छा,
0: जाओ, चलो चलो
3: देखो देखो मरे को कैसे हंस हंस के बात कर रहा है, है? लड़कियों से देखो तो जरा, सेहरे में से सबके गहने ताक रहा होगा। बेहया चुट्टा।
0: भाभी आप तो चुप रहो।
3: अरे देवर जी पिस्तौल अच्छे से संभाले रहना, कहीं यूं ही ना चल जाए।
4: तो क्या हुआ?
5: भैया ऐसा हुआ कि बलराम सुभद्रा का ब्याह अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते थे।
4: अच्छा?
5: हाँ, और कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से। तो अर्जुन सन्यासी के वेश में रैवतक पर्वत पर आकर रहने लगे।
4: अच्छा?
5: और जब सुभद्रा वहाँ देवी की पूजा करने आई तो उसे लेके चंपत हो गए।
3: इसका भी यही इरादा है, देवी पूजने जाएगा उषा के गहने लेकर भाग जाएगा।
4: क्या हुआ जी जी?
5: अरे फिर जाते जाते अर्जुन अपनी दाढ़ी और जटाजूट देवी के चरणों में अर्पण कर गए।
4: आप भी अपनी दाढ़ी यानी कि सेहरा मंदिर में छोड़ आएंगे? हाय बेचारा, इतना प्यारा सेहरा।
5: कहिए तो आपके नाम पर बांधे किसी को ये सेहरा?
4: ऐसे फोकट में थोड़ी हम अपना नाम दे देंगे किसी को। उषा ने क्या यूं ही अपने नाम का सेहरा बंधवा दिया आपको? जीजा जी, आप भी कहीं सन्यासी के भेष में उषा से मिल तो नहीं चुके? हाँ भाई, एक फकीर आजकल उषा के दरवाजे पर अक्सर देखा जाता था। कहीं वो आप ही तो नहीं थे जिया जी? ठीक मानने के बहाने
5: अच्छे गाजे बाजे धूम धाम से अपने आपकी आंखों के सामने से अपनी चीज ले जाएंगे।
3: यही था वो फकीर, वो चुट्टा।
0: ओफो, चुप भी रहो भाभी, भैया अभी तक नहीं आए।
3: हाँ।
4: महंगा ना पड़ जाए जिया जी।
5: भैया हम सौदेबाजी नहीं करते, जो लेना है ले लेते हैं। डाका डाल।
3: ये चोर नहीं, डाकू है, डाकू।
0: भैया अभी तक नहीं आए। लो भाभी ये टार्च संभालो, टार्च।
3: टार्च?
0: कहीं बिजली चली गई तो तुम दूल्हे पर टॉर्च की लाइट फेंकना।
3: अच्छा।
0: और मैं हैंड्स अप करूंगा।
3: अच्छा अच्छा ठीक है। अरे अरे देवर जी, ये टॉर्च तो जली नहीं रही।
0: खबरदार दूल्हे भैया, खबरदार, मेरे हाथ में पिस्तौल है और निशाने तुम पर सदा हुआ है। वहीं बैठ रहो, हिलने की कोशिश मत करना, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। हाँ पकड़ो।
3: टॉर्च जल गई?
0: टॉर्च नहीं जली, लाइट आ गई।
3: ओहो, अरे ये पिस्तौल तो हटाओ देवर जी, आप तो मुझे पर पिस्तौल ताने खड़े हो।
0: अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, दूल्हा तो वहीं बैठा है।
3: अरे अरे देखो देखो उधर देखो, वो पुलिस पीछे के बरामदे से दो डाकुओं को पकड़ कर ला रही है।
6: साहब, इन दो लोगों को हमने पीछे से पाइप के सहारे अटारी पर चढ़ते हुए पकड़ा है।
7: अरे आपका लाख लाख शुक्र हवलदार साहब, आपकी होशियारी से हम चोर पकड़ने में सफल हो गए।
3: पर ये तो

0: अरे ये तो अपने सुधीर है।
1: और ये राकेश असली दूल्हा।
2: हवलदार साहब ये हमारे ही घर के लड़के हैं, आप नीचे चलिए, मैं इनसे पूछताछ कर आपको अभी बताता हूँ।
1: ठीक है। क्यों सुधीर?
3: जी पापा, मैं आपको अभी सब समझा देता हूँ।
2: समझाओ नहीं, सच सच बताओ, सब कुछ बताओ।
3: पापा अब जब शादी हो ही चुकी है तो नाराज होने से क्या फायदा।
2: अच्छा,
3: राकेश के पापा भी नाराज नहीं है। क्यों राकेश?
2: यस यस अंकल, ही इज राइट। सुधीर शुरू से और साफ साफ बताओ।
3: बिल्कुल पापा जी, वो पापा ऐसा हुआ कि वो जो दूल्हे के डिस्गाइज में नकली दूल्हा बैठा है ना, वो असली दूल्हा ही है। यानी कि अब हो गया है वो मेरा और राकेश का फर्स्ट फ्रेंड है।
2: यस यस, फर्स्ट फ्रेंड।
3: हम तीनों एक बार कॉलेज से पिकनिक पर गए थे।
2: यस यस, पिकनिक।
3: वहाँ उषा और उसके कॉलेज की लड़कियां भी आई थी।
2: फिर
3: पापा वो ऐसा हुआ पापा कि राकेश की बात किसी और से चल रही थी।
2: जी जी, फर्स्ट ईयर से ही चल।
3: इसके फर्स्ट ईयर से नहीं पापा, लड़की के फर्स्ट ईयर से।
2: आगे बोलो।
3: जी पापा जी, वो ऐसा हुआ कि पिकनिक पर उषा और विजय, अरे वो जो नकली दूल्हा है लेकिन अब असली हो गया है, एक दूसरे को भा गए।
2: क्या ये वही विजय है जिसके बारे में तुमने और उषा ने मुझसे बात की थी?
3: बिल्कुल पापा, वही विजय है। इसने अभी अभी मेरे ही अस्पताल में पोस्टिंग करवाई है। अब तो पापा दोनों की शादी भी हो चुकी है।
2: अरे मूर्खों, नालायकों, अब तुम्हारे पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राकेश? और तुम्हारे चाचा, क्या वे भी षड्यंत्र में शामिल थे?
4: जी जी, नहीं तो पापा को नींद की गोलियां कौन खिलाता?
2: नींद की गोली?
4: जी हाँ, ट्रेन में ही। भला उनकी आंखों के सामने से मैं किस तरह भाग सकता था?
2: लेकिन तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी?
3: अरे पापा, बात यह है पापा कि अभी अभी हम लोग मंदिर से इसकी भी शादी कराकर आए हैं।
2: क्या?
3: जी हाँ, इसकी प्रेमिका से।
2: और उषा की सहेलियां?
3: वो सब इस बात को जानती हैं।
2: अरे हद है चालबाजी की, अब मैं तुम्हारे पिताजी को क्या समझाऊं जाकर?
4: आप परेशान न हो अंकल, चाचा जी ने उन्हें मना लिया है।
3: उन्होंने कहा है कि अब उसी सहरे को बांधकर राकेश इसी मंडप में अपनी दुल्हन से विधिवत फिर शादी करेगा।
2: लेकिन तुम लोग चोरों की तरह पीछे से क्यों चल रहे थे?
3: आपके डर से। हम तो चुपचाप घुसकर ये देखना चाहते थे कि विजय पर क्या गुजर रही है। हमें क्या पता था आपने पुलिस भी बुला रखी है।
2: खामोश, उस अटरिया के चोर को मेरे सामने लाओ।
5: ठाकुर साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ मजबूरी में बड़ा धोखा किया। मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं
2: हूं। जो हुआ सो हुआ जमाई जी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा। लाइए, अब तो ये सहरा उतार कर अपना चेहरा दिखा दीजिए।
5: भाई लो भाई राकेश, अपना सहरा संभालिए। मैं तो अपना चेहरा छुपाते छुपाते परेशान हो गया।
2: चलो असली दूल्हे, चलो लगन मंडप में, चलो चलो।
6: अरे चलो, जो नकली सुबह

कटरिया पे चोर। अभी आपने आशा मिश्रा की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशिका थी कमला सक्सेना और ये नाटिका आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

0: आजादी के बाद की आठवीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक se.census.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।
1: तो तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से।
0: सेंसस 2027।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं सविता सिंह।

नीति मोहन और सोफिया अशरफ की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार थे ए आर रहमान और फिल्म का नाम जब तक है जान। लीजिए अब सुनिए सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गाना। आवाज है गुरु रंधावा की। गुरु रंधावा गीतकार हैं और संगीतकार भी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इसी के साथ ही पूरा होता है कार्यक्रम चित्रलोक।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का। नागपुर केंद्र FM 100.6 MHz पर रात्रि के 8:45 होने वाले कुछ ही पलों में आप सुनेगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। समाचारों के लिए प्रतीक्षा चंद लम्हों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता

0: विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
3: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
4: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
5: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
5: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 24 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

0: युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज

0: और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में पारस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना इंदिवर की थी, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों आपको याद दिला दें कि हमारा अगला कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री नरगिस पर, सुनिएगा जरूर। और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे हमने खानदान फिल्म से लिया है, लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

साथियों, अभी जो गीत आप सुन रहे थे ये कन्यादान फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज थी और इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और तर्स बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये है मेरे महबूब फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की तर्स।

इंसान जाग उठा, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें हैं, बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और धुन एस टी बर्मन ने बनाई है।

राम और श्याम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। यह है वीर दुर्गादास फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज।

0: लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में वीर दुर्गादास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भरत व्यास की ये रचना थी और एसएन त्रिपाठी की तर्ज। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
5: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
6: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
7: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 10 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: काजल है
0: आपके लिए कार्यक्रम में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बहुरानी फिल्म का ये गीत।

बहुरानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने के यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

असद का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश ए हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो गई। जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

ती है सन 1949 में चमका, नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 400।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

आह के बाद धुन, पापी और जागती रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा।

0: सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।
1: रुक कर,

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजजंती भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।

लिया है भरू पागलों की तरह, जाने फिर क्यों फिर क्यों, जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में, तन बदन जल गया प्यार की आग में, तन बदन

0: प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे फैशन की

इनको टाटा करना कर हो जान बचानी, फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जवानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तान, बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो।

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: हमारी
1: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

0: प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।
1: भुस भर दिया अयो, भुस भर दिया मेरी चाहत में,

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले, हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: मरना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
3: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
4: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
5: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
6: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
7: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: जाए रात। सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: विद गीज के साथ ही आज का ढलती जाए रात ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है, रात के 11 बजने वाले। आइए सुनते हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ

0: सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है, FM 100.6 MHz पर। रात्रि के 11:05 और 10 सेकंड हो चुके हैं। पेश है चंद बेला के फूल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ हमने किया था इनकार फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे रचा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। राजेश रोशन का संगीत था, आशा भोसले और किशोर कुमार की थी आवाजें। अगला गीत है लाल पत्थर फिल्म का, शंकर जयकिशन का संगीत, नीरज के बोल, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें।

बेला के फूल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फोक जमी का ये कलाम, राजकमल द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ है। येसुदास की आवाज़ सावन को आने दो इस फिल्म के लिए।

सावन को आने दो इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना येसुदास की आवाज में। संगीतकार थे राजकमल। विविध भारती पर इस समय जारी है कार्यक्रम बेला के फूल। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये गीत मन्ना डे का गाया हुआ। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

बेला के फूल कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन की तर्ज है, फिल्म जहरीला इंसान के लिए।

कार, लाल पत्थर, सावन को आने दो, सौदागर और जहरीला इंसान इन फिल्मों के नगमे। उम्मीद है आज का ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। और अब दीजिए इजाजत कार्यक्रम समाप्त करने की।

आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है FM 100.6 MHz पर। आइए सुनते हैं मौसम का हाल। बीते 24 घंटे में नागपुर का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस जो औसत से 0.9 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस जो औसत से 2.9 डिग्री कम आका गया। अनुमान है आने वाले 24 घंटों में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश गरज के साथ बिजली तथा धूल मिश्रित हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ये था मौसम का हाल। FM बैंड 100.6 MHz वर आकाशवाणी नागपूरचं हे विविध भारती केंद्र आहे। रात्रीचे 11:30 आणि 10 सेकंद झालेली आहेत। आमच्या केंद्राचे आजचे कार्यक्रम संपलेत। पुन्हा आपली भेट होईल 2 सकाळी 5:55 शुभरात्री। जय हिंद।